मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तद अनुसार 10 जून 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर

0: सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में इस देशगान से।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में यह भक्ति गीत।

चित्रा सिंह की गाय इस भक्ति रचना के बाद आइए सुनते हैं डीवी पलस्कर की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: एमएस सुब्बलक्ष्मी की आवाज़ में गाय इस कृष्ण भजन के साथ ही आज की आराधना संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख चुनौतियां। संकलन एवं वाचन स्वर हैं शबनम खानम के।
1: जीवन की अग्नि परीक्षा और आत्मबल का उत्कर्ष होती हैं चुनौतियां। ये जीवन के मार्ग में आने वाले वे कठिन मोड़ हैं जो मनुष्य की क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास की वास्तविक परीक्षा लेते हैं। ये केवल बाधाएं नहीं होती बल्कि वे अवसर भी होते हैं जो व्यक्ति को भीतर से अधिक दृढ़, परिपक्व और प्रकाशमान बनाती हैं। जीवन यदि एक शांत सरिता है तो चुनौतियां उसके तीव्र प्रवाह की वे लहरें हैं जो उसे गतिमान बनाए रखती हैं। बिना संघर्ष के प्राप्त सफलता वो गहराई नहीं होती जो कठिनाइयों को पार करके अर्जित उपलब्धियों में दिखाई देती हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर और अधिक कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी चुनौतियों के ताप में तपकर अधिक उज्ज्वल बनता है। चुनौतियां यानी अंधकार में जलती आशा की दीप शिखा। चुनौतियां जीवन का वो अध्याय हैं जिन्हें पढ़े बिना कोई भी मनुष्य अनुभव, परिपक्वता और आत्मबल की वास्तविक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। ये केवल कठिन परिस्थितियां नहीं होती बल्कि जीवन की वे मौन शिक्षिकाएं होती हैं जो संघर्ष के माध्यम से मनुष्य को उसकी छिपी हुई क्षमताओं से परिचित कराती हैं। जब जीवन सरल और अनुकूल होता है तब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान नहीं पाता, किंतु जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं वैसे ही उसके भीतर साहस का एक नया स्रोत जागृत होने लगता है। यही चुनौतियों का सबसे बड़ा उपहार है। वे हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का परिचय कराती हैं। प्रकृति का प्रत्येक दृश्य संघर्ष और धैर्य की प्रेरणा देता है। सूर्य प्रतिदिन अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाता है। नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं छोड़ती। वृक्ष आंधियों के बीच भी अपनी जड़ों को थामे रखते हैं। प्रकृति का ये मौन संदेश स्पष्ट है कि कठिनाइयां मार्ग रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ने की क्षमता सिखाने आती हैं। चुनौतियां मनुष्य को भीतर से दृढ़ बनाती हैं। वे उसे ये सिखाती हैं कि हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। कठिन समय में धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही वे तीन दीप होते हैं जो जीवन के अंधकारमय मार्ग को भी प्रकाशित कर देते हैं। जब मनुष्य संघर्षों से गुजरता है तो उसके भीतर संवेदनशीलता भी बढ़ती है। वो दूसरों के दुख को बेहतर ढंग से समझने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में कठिनाइयां देखी होती हैं वे अक्सर अधिक विनम्र, सहृदय और करुणामयी बन जाते हैं। वाणी और विचारों का प्रभाव चुनौतियों के समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने शब्दों में आशा और अपने विचारों

0: में विश्वास बनाए रखे तो सबसे कठिन परिस्थिति भी धीरे धीरे सरल होने लगती है। निराशा मनुष्य को भीतर से कमजोर करती है, जबकि आशा उसे बार बार उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है। इतिहास के महान व्यक्तित्वों का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि चुनौतियां सफलता की राह में बाधा नहीं बल्कि सफलता तक पहुंचने का मार्ग होती हैं। जिन्होंने कठिनाइयों के सामने धैर्य नहीं खोया वही आगे चलकर प्रेरणा के उज्ज्वल स्तंभ बने। आज का समय अनेक प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है, प्रतिस्पर्धा, तनाव, असुरक्षा और अनिश्चितता। परंतु वही व्यक्ति जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त करता है जो परिस्थितियों के दबाव में टूटता नहीं बल्कि उनसे सीखकर और अधिक मजबूत बन जाता है। अतः चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, उन्हें जीवन की अग्नि परीक्षा समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई अपने भीतर एक नई संभावनाएं छिपाए रखती है। हर संघर्ष आत्मबल को निखारता है और हर चुनौती मनुष्य को उसकी वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे आज का आलेख चुनौतियां, संकलन एवं वाचन स्वर थे शबनम खानम के। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर हैं सुरेश वाडकर के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

0: सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि परामर्श पर आधारित कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम में सामूहिक सुझाव का विषय है बीजों की सुरक्षा जरूरी।
1: बीजों को कैसे सुरक्षित रखें? मुख्य रूप से एक किसान औसत 70% अनाज, भोजन, बीज एवं बिक्री के लिए भंडारित करते हैं और भंडारण के दौरान अनाज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती है। इस गुणवत्ता को फसल कटाई के बाद बीजों को कम नमी और कम तापमान पर रखने से काफ़ी समय तक रोका जा सकता है। बीजों के भंडारण के स्थान पर जहाँ अधिक नमी हो वहाँ बीज में कई प्रकार के कीट व कवकों का बीज पर आक्रमण हो जाता है। इससे बीजों की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्कृत बीज का यदि उचित समय में देखभाल एवं भंडारण नहीं किया जाए तो इसका प्रभाव बीजों के अंकुरण क्षमता पर भी पड़ता है। इसके कारण लगभग 10% अनाज बर्बाद हो जाता है। भंडार गृह के लिए महत्वपूर्ण बातें। बीज को भंडारित करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भंडारण के लिए स्थान का चुनाव। किसी भी जगह बीज को भंडारण करना है वह स्थान आसपास के स्थान से ऊंचा होना चाहिए तथा उस स्थान पर पानी नहीं भरना चाहिए और वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जहां दीमक का प्रकोप हो वहां भंडार गृह नहीं होने चाहिए। भंडार गृह की दीवारों में किसी प्रकार की दरारें नहीं हो क्योंकि वे कीड़ों के प्रजनन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भंडार गृह की खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए तथा छाया वाले स्थान पर होने चाहिए। भंडार गृह की सफाई। भंडार गृह की सफाई समय समय पर करते रहनी चाहिए। भंडार गृह में खाली स्थान बोरियों के अलावा की सप्ताह में एक बार तथा बोरियों की एक माह के अंतराल पर सफाई करनी चाहिए। दीवारों एवं छत की गंदगी दिखते ही सफाई करनी चाहिए तथा कचरे को जला देना चाहिए। गेहूं, जौ, बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग। डेल्टा मेथिन 4 मिलीलीटर को आधा लीटर पानी में मिलाकर प्रति 100 किलोग्राम बीज की दर से सीड ड्रेसर में मिलाकर एवं बीज को अच्छी तरह सुखाकर बोरियों में एक साल तक कीट रहित भंडारण किया जा सकता है। नीम एवं पलाश के तेल अखाद्य तेल का 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग कर गेहूं के बीज को एक वर्ष तक घुन से सुरक्षित किया जा सकता है। दलहन बीजों के लिए कीटनाशक का प्रयोग। थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो का उपयोग कर बीज को धौरा कीट से सुरक्षित रखा जा सकता है। चने के बीज को मूंगफली या सरसों के तेल से 10 मिलीलीटर प्रति किलो की दर से उपचारित कर धौरा कीट के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सकता है। बोरियों पर डेल्टा मेथ्रिन 2.5 WP या 125 PM से अच्छी तरह छिड़काव कर सुखा लेना चाहिए। फिर इनमें बीज भर कर रखने से 6 महीने तक कीड़ों से सुरक्षित रखा जा सकता है। मूंग के बीजों को थायोमिथाक्स 70 WS 2.8 मिलीग्राम की दर से डेल्टा मेथ्रिन 2.5 WP 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करने पर उनका भंडारण जूट की बोरियों में 9 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है और बीजों की अंकुरण क्षमता भी बरकरार

0: रहती है।
1: कपास के बीजों का भंडारण।
0: कपास के बीजों में छुपी हुई गुलाबी सुंडी को नष्ट करने के लिए बीजों को धूमित करने हेतु 40 किलोग्राम बीज में एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम मात्रा मिलाकर इसे हवारोधी बनाकर 24 घंटे तक बंद रखने के बाद भंडारित करें। धूमित करना संभव न हो तो तेज धूप में बीजों को पतली तह के रूप में फैलाकर 6 घंटे तक तपन देवें एवं बाद में भंडारण करें। भंडारण के लिए 700 गेज पॉलीथीन बैग का प्रयोग करें। इसमें सब्जी फसलों जैसे मिर्च, प्याज आदि का सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है, लेकिन 700 गेज पॉलीथीन का ही प्रयोग करें एवं बैग में भरने से पूर्व बीज पूरी तरह सूखा होना चाहिए। बीजों को कीट रहित करने के लिए फ्यूमिगेशन पद्धति का प्रयोग करें। फ्यूमिगेशन सल्फास की गोली 3 ग्राम प्रति घन मीटर भंडारण की जगह की दर से हवा बंद भंडारण ग्रहों का फ्यूमिगेशन करना चाहिए। ऐसा करने पर बीज एक सप्ताह में कीट रहित हो जाएगा। अन्य फसलों के लिए बीज भंडारण में सावधानियां। खलिहान से बीज को अच्छी तरह से सफाई के बाद ही भंडारण करना चाहिए।

मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं।

सुबह 7 बजे आप सुन सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे जंगल। सुबह 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा, शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वीर बंदन आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। सुबह 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन एक नए विषय के साथ। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा वर्तमान में हमारा समाज और बेटियां, साथ ही मृदा संरक्षण पर चर्चा होगी। दोपहर 1:40 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम शाम 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम युवाणी में आज आप सुन सकेंगे युवा सोच कहानी पाठ और कुछ फिल्मी नगमे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। सामयिक चर्चा का विषय होगा ड्रोन तकनीक से आधुनिक खेती, नमो ड्रोन दीदी योजना। साथ ही सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरगुजिया देवी भजन से। स्वर हैं शंकर राम यादव और साथियों के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अलीमा तिग्गा और साथियों के स्वरों में आइए सुनते हैं सादरी गीत।

कार्यक्रम गूंजे जंगल के अंत में आइए सुनते हैं उमा शंकर राजवाड़े और साथियों की आवाज़ों में सरगुजिया छोटे साजन गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गज़ल।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में नसीम रिफत का कलाम।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ आपका रेडियो साथी गोपेश। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार सरगुजा, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बलरामपुर जिले से। पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 11 जून से। शासकीय पॉलिटेक्निक रामानुजगंज में 2026-27 के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग के प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 जून 2026 से 15 जून 2026 तक चलेगा। 16 जून को मेरिट सूची जारी की जाएगी। 17 जून को दावा आपत्ति और 19 जून को सीट आवंटन का परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी 20 से 24 जून तक प्रवेश ले सकेंगे। सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय चरण का पंजीकरण 26 जून से 30 जून तक किया जाएगा। इसके तहत 4 से 9 जुलाई तक प्रवेश दिए जाएंगे। सेवा सेतु पोर्टल से राशन कार्ड संबंधी सेवाएं हुई ऑनलाइन। अब घर बैठे कर सकेंगे आवेदन। नया राशन कार्ड सदस्य जुड़ने एवं विलोपन की होगी सुविधा। राज्य शासन द्वारा आम नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं वेबसाइट सेवा सेतु के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब नागरिक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा सदस्य विलोपन जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से सभी लोक सेवा केंद्रों, नगरीय निकायों तथा आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। उससे पहले आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ों में फिल्म पहचान का गीत।

नमस्कार सरगुजा। अगली खबर कोरिया जिले से। उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को एवं 20 जून तक आवेदन। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन

5 जुलाई 2026 रविवार को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। जारी जानकारी के अनुसार परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जो कोरिया जिले के मूल निवासी हों। छत्तीसगढ़ में मान्य अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से संबंधित

ग्रेड प्राप्त होना आवश्यक है। योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही मिलेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा चौथी उत्तीर्ण छात्र छात्राएं ही पात्र होंगे। नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। कार्यक्रम में कुछ और भी खबरें, उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनपढ़ का गीत।

फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। कार्यक्रम में अगली खबर अंबिकापुर से। स्वस्थ तन स्वस्थ मन। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2007 हेतु निजी चिकित्सकों के आवेदन 15 जून तक आमंत्रित। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु स्वस्थ तन मन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नियम 2007 के क्रियान्वयन हेतु जिन स्थानों पर जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित नहीं है उन स्थानों में स्थापित छात्रावास आश्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य सलाह एवं स्वास्थ्य सुझाव माह में कम से कम दो बार या एक से अधिक छात्रावास आश्रमों में किए जाने हेतु वर्ष 2026-27 में निर्धारित मानदेय पर MBBS एवं BAMS BHMS निजी चिकित्सकों से अपने लेटर पैड पर आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन 15 जून 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर में आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सरगुजा जिले के चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुबंधित चिकित्सकों को 50 सीटर छात्रावास आश्रम हेतु ₹750 एवं 100 सीटर छात्रावास आश्रम के लिए ₹1,200 प्रति भ्रमण मानदेय शासन द्वारा दिया होगा। चिकित्सक माह में कम से कम दो बार छात्रावास आश्रमों के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। बालिकाओं के लिए महिला चिकित्सक को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुबंध हेतु चिकित्सा चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। चिकित्सक किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत न हो वही आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म पत्थर के सनम का गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने

नमस्कार सरगुजा, खबर अंबिकापुर से। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आगामी 11 जून 2026 को प्री बीएड एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा पूर्वान 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित होगी। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा जिले के 20 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 6982 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए जिले में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 2124 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं में कुल 9106 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गुमराह।

0: इन्हीं गीतों और समाचारों के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त होता है।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके

0: सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है, तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि

0: हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और POK में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वीर वंदन। नमस्कार, कार्यक्रम वीर वंदन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे क्रांतिकारी का जिनका नाम भले ही इतिहास के पन्नों में बहुत अधिक चर्चित न रहा हो, लेकिन इनका त्याग और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर है। आज 10 जून है। इस दिन वर्ष 1888 में पंजाब के गुजरावाला में क्रांतिकारी बलराज भल्ला का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। श्रोताओं, किशोरावस्था में ही बलराज जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रनायकों के विचारों ने उनके मन में देशभक्ति की ऐसी लौ जलाई जिसने उन्हें क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

श्रोताओं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश भर में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी। बलराज भल्ला जी भी उन युवाओं में शामिल थे जो अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संगठित प्रयास कर रहे थे। वे सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे और युवाओं को राष्ट्र सेवा एवं देशभक्ति के लिए प्रेरित करते रहे। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कठोर कारावास भी झेलना पड़ा। कार्यक्रम में पहला गीत आपने सुना फिल्म रोजा से, स्वर थे हरिहरन के। आइए सुनते हैं फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गीत सोनू निगम और अनुराधा की आवाजों में।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वीर बंधन के आज के अंक में। साथियों, कार्यक्रम के आज के अंक में हम बातें कर रहे हैं अमर बलिदानी बलराज भल्ला के विषय पर। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियां उनके साहस को डिगा नहीं सकी। बलराज भल्ला जी ने जेल के भीतर भी अन्य राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण के दौरान वे उन क्रांतिकारियों में शामिल थे जिन्होंने राजनीतिक बंदियों को सम्मानजनक व्यवहार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका विश्वास था कि शरीर को कैद किया जा सकता है लेकिन विचारों और आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाजों में फिल्म उपकार का गीत।

से भी देश आज़ाद होना चाहिए। हर वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की भी स्वतंत्रता उनके क्रांतिकारी उद्देश्य का महत्वपूर्ण अंग था। वर्षों तक संघर्ष और त्याग के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने राष्ट्र सेवा को ही अपना धर्म माना। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि देशभक्ति केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के प्रत्येक प्रयास में दिखाई देती है। बलराज भल्ला देश के ऐसे महान सपूत थे जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कवि प्रदीप का लिखा ये देशभक्ति गीत।

साथियों, शहीद बलराज भल्ला केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। वे आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत का निर्माण केवल राजनीति और आज़ादी से नहीं है बल्कि सामाजिक जागरूकता और शिक्षा

क्रांतिकारी बलराज भल्ला की पावन स्मृति को शत शत नमन। इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम वीर बंदन का आखिरी गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है शहीद।

0: सही,
1: नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर बंधन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम गांधी चर्चा हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज सुनिए श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार।
1: मिस मेरी चिस्ले नाम की एक अंग्रेज बहन सन 1934 में हिंदुस्तान में थी। उन दिनों बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। जहाज से उतरते ही वह कांग्रेस कैंप में पहुंची और मेरे झोपड़े में आकर उसने मुझसे कहा, मैं मीरा बहन को जानती हूं और मीरा बहन के साथ ही मैं यहां आने वाली थी, पर किसी कारणवश उनके एक आध हफ्ते पहले ही मैं विलायत से रवाना हो गई। गाँव में रहकर भारत की सेवा करने की उसकी इच्छा थी। उसकी बातचीत से मैं कुछ प्रभावित नहीं हुआ और मुझे लगा कि वह हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा महीने ठहरने की नहीं, पर मेरी ये भूल थी। मिस मेरी बार को, जिन्होंने बैतूल मध्य प्रदेश से कुछ मील दूर खेड़ी गांव में पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, वह बहन जानती थी। मेरी बार मिस चेस्ले को अपने साथ वर्धा ले आई और कुछ दिन तक हम सब वहाँ एक साथ रहे। मिस चेस्ले का निश्चय देखकर तो मैं चकित रह गया। मेरी बार के साथ उसने खेड़ी में ग्राम सेवा का कार्य आरंभ कर दिया। भारतीय पोशाक पहन ली और अपना नाम तारा बहन रख लिया। खेड़ी में उसने इस कदर सख्त परिश्रम से काम किया कि बेचारी मेरी बार तो देखकर हकबका गई। वह मिट्टी खोदती और सिर पर टोकरी रखकर ढोती। अपना भोजन उसने इतना सादा बना लिया था कि उसका स्वास्थ्य तक खराब हो गया। कनाडा से काफ़ी पैसा आता था, पर उसमें से वह सिर्फ 10 रुपए के लगभग ही अपने लिए रखती और बाकी सब ग्राम उद्योग संघ को या हिंदुस्तान के उन भाई बहनों को दे देती थी जिनके संपर्क में वह आती थी और जो उसे मालूम होते थे कि आगे चलकर वह अच्छे ग्राम सेवक बन सकते हैं और जिन्हें रुपए पैसे की कुछ ज़रूरत होती थी।

मैंने उसे बहुत ही निकट से देखा। उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। मानव प्रकृति की अच्छाई में उसकी बहुत श्रद्धा थी। वह सच्ची ईसाई थी, क्वेकर संप्रदाय की, पर उसमें कोई संकीर्णता नहीं थी। दूसरों को अपने धर्म में मिलाने में उसका विश्वास नहीं था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वह ग्रेजुएट थी और एक अच्छी शिक्षिका थी। लंदन में कई साल तक उसने एक स्कूल चलाया था। उसने फौरन ये महसूस कर लिया कि हिंदी उसे ज़रूर सीख लेनी चाहिए और नियमित रीति से वह हिंदी का अभ्यास करने लगी। बोलचाल की हिंदी सीखने के लिए वह कुछ महीने वर्धा के महिला आश्रम में आकर रही और वहीं उसने दो बहनों के साथ गर्मियों में बद्री केदार जाने का विचार किया। मैंने उसे इस खतरनाक यात्रा से आगाह कर दिया था, लेकिन जब वह एक बार निश्चय कर लेती थी तो ऐसे ऐसे साहसिक कामों से उसका मन फेरना मुश्किल होता था। बद्री केदार की भयानक यात्रा उसे करनी ही थी, इसलिए अपने मित्रों के साथ उस दिन वह रवाना हो गई। 15 मई को कनखल से मुझे यह संक्षिप्त तार मिला, तारा बहन का शरीरांत हो गया।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा में महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर कथा। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, बोल शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौशाद का है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:16 हुए हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में हम तीन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला विषय होगा साइबर जागरूकता, दूसरा सोशल मीडिया का सदुपयोग और तीसरा और आखिरी विषय गर्मियों में स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय। साथियों, आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को बदल दिया है, लेकिन इनके सुरक्षित उपयोग की जानकारी भी उतनी ही आवश्यक है। साथ ही बढ़ती गर्मी में अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए ज्ञान जागरूकता और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गुंजन की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। इसे हमने लिया है फिल्म धनवान से। स्वर हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के।

साथियों, आज अधिकांश लोग मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ख़रीदारी और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सुविधा के साथ साथ साइबर अपराधों का भी खतरा बढ़ गया है। साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगते हैं। फर्जी कॉल करके OTP मांगना, नकली बैंक अधिकारी बनकर जानकारी लेना, लॉटरी या इनाम का लालच देकर फर्जी लिंक भेजकर बैंक खाते की जानकारी चुराना, सोशल मीडिया के माध्यम से अकाउंट हैक करना। साथियों, याद रखें साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियम। OTP, CVV और पासवर्ड किसी को भी न बताएं। अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें। मोबाइल और कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखें। साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। सावधानी ही साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म लव स्टोरी का गीत।

0: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
0: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
0: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
0: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में एक बार फिर से। श्रोताओं, सोशल मीडिया आज संचार का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसका उपयोग ज्ञान, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और सामाजिक जागरूकता के लिए किया जा सकता है। यदि हम इसके सकारात्मक उपयोग की बात करें तो इसके माध्यम से शैक्षणिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लग सकती है। रोजगार एवं कौशल विकास की जानकारी पाना, समाज सेवा और जन जागरूकता फैलाना, परिवार और मित्रों से जुड़े रहना सोशल मीडिया के प्रमुख और सकारात्मक लाभ हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: साथियों, आज के समय में समाज का हर वर्ग, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। लेकिन हमें इसका उपयोग करते समय बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी अफवाहों पर विश्वास न करें। कोई भी समाचार साझा करने से पहले उसका सत्यापन ज़रूर करें। आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट न करें। व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। दोस्तों, सोशल मीडिया का सीमित और संतुलित उपयोग हम सभी के लिए लाभकारी होगा। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है। इसका उपयोग समाज निर्माण और सकारात्मक परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म बेताब का गीत।

हाइड्रेशन, थकान और पेट संबंधी रोग इस मौसम में सामान्य हैं। आइए कुछ बातें करते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा के उपायों पर। दोस्तों, ऐसे मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। घर से निकलते समय सिर को ढक कर रखें। धूप में अधिक समय तक न रहें। ताज़े फल और हरी सब्जियां खाएं। दोस्तों, कोशिश करें बासी और खुले खाद्य पदार्थों का सेवन न हो। यदि हम लू लगने के लक्षणों की बात करें तो तेज़ बुखार आना, चक्कर आना, अत्यधिक प्यास, उल्टी या कमजोरी, ये लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को छायादार स्थान पर ले जाएं, ठंडा पानी दें, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क भी करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म लोफर का गीत।

साथियों, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया का जिम्मेदार उपयोग और स्वास्थ्य के प्रति सजगता जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बन गई हैं। याद रखें, सावधानी अपनाएं, जागरूक बने, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक से मुझे यानी अपने रेडियो साथी गोपेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे थे साइबर जागरूकता, सोशल मीडिया का सदुपयोग और गर्मियों में स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। और बिलासपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास

कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, EKYC और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भर कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में CM हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही स्थिति अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से मेघ गर्जन की गतिविधि बढ़ने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला आरक्षक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खुर्सीडीह बोरई मार्ग पर एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में महिला आरक्षक हेमलता ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। और बिलासपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। सुनते हैं मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही औसत वर्षा 22.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम की जानकारी के बाद आइए एक नज़र डालें आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों पर। सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12 बजे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा वर्तमान में हमारा समाज एवं बेटियां। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गोठ बात कार्यक्रम पत्रों व मेलों पर आधारित। दोपहर 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:30 पर आप सुन सकेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे युवा सोच, कहानी पाठ और कुछ फिल्मी नगमे। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहर साय, जवाहिर राम राजवाड़े और साथियों के स्वरों में कुछ सरगुजिया लोकगीत। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा ड्रोन तकनीक से आधुनिक खेती, नमो ड्रोन दीदी योजना, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे मानसून आधारित धान की खेती में जल प्रबंधन की भूमिका, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था तथा पोषक अनाजों से समृद्धि, मिलेट मिशन और किसानों के लिए नए बाजार अवसर। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज, जिसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमे। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। समय हो रहा है कुछ नए फिल्मी गीतों का, तो लीजिए सुनिए नए फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म स्त्री 2 के इस गीत से। स्वर हैं अमित भट्टाचार्य, सचिन जिगर, शिल्पा राव और साथियों के। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम नए तराने में सुनते हैं शान और पलक मुच्छल की आवाज में दीपक सेन का लिखा गीत। संगीतकार हैं बप्पी लहरी। फिल्म का नाम है मौसम इकरार के, दो पल प्यार के।

जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं। परिवार

0: और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह, मनी महादेवन और रवि मिश्रा की आवाजों में फिल्म राजी का गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मशीन से। स्वर हैं जुबिन नौटियाल के। इस गीत को लिखा है मोहम्मद इरफान ने और संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने।

कार्यक्रम नए तराने में पेश है अरिजीत सिंह की आवाज में सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गीत। फिल्म का नाम है दुकान। इस गीत को संगीत से सजाया है श्रेयस और पौराणिक ने।

अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले का गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एनिमल का गीत। गीतकार हैं सिद्धार्थ और गरिमा, संगीतकार हैं श्रेयस और पौराणिक।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है छिछोरे।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फिल्म धुरंधर का गीत, खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाजों में। इस गीत को लिखा है नुसरत फतेह अली खान ने और धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने।

कार्यक्रम नए तराने के अंत में सुनिए फिल्म गोल्ड का गीत यासिर देसाई की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार हैं आरको।

यासिर देसाई के गाय फिल्म गोल्ड के इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह

विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड पर 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। पहला फरमाइशी मिली है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। दर्री रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, नीतू वैद्य। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या कश्मीरा कामले। इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू जगदीश, गोविंदा देवांगन, विशाल पायल, अक्षय कुमार देवांगन। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राजेश राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली,

नदीम अली जुनेदा अब्बासी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, पलक, करण, नीतू, निहारिका, वंश बत्ता। अराड नांदघाट जिला बेमेतरा से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, ओपी वर्मा। आइए लीजिए सुनिए आप सभी के पसंद पर आपके फरमाइश गीत तुम आ गए हो नूर आ गया है। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज़ में।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

इस गीत के बाद अगला फरमाइश मिली है, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, नारायण भाव खर्चे। बिलाईगढ़ से लेवा खेल मोहल्ला चांदूर विश्वास से नारायण भाव खड़से, ललिता खड़से, परी खड़से, गणेश कार्तिक भाव खड़से, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण खर्चे। महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, श्रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा डोंगर दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं गीत घूंघट में चांद होगी, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म खूबसूरत का गीत। स्वर थे कुमार सानू व कविता कृष्णमूर्ति के। गीतकार थे संजय, संगीतकार थे जतिन ललित।

इस गीत के बाद अगला फरमाइश हमें भेजा है बढ़ेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौंदा सरगवा से सुजान वर्मा, सौहार्द वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, डोंगर गांव से जिला राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, मेहरनगर अजमेर अमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहानकर, राही सिद्धांत गौहानकर, प्रिंस एकांश गौहानकर, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान शेख, नाज प्रवीण, चांदनी नाज। इनकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए आपकी पसंद की फिल्म हीर रांझा का गाना। लेखक है कैफ़े आज़मी और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अब पेश है उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। इस गीत को सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चांदनी संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, नमन, तानिया। बेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु करमरकर। आदर्श नगर मलेश से राज शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवास शर्मा। गड़िया मैमो उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, सुनीता देवी। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री सोनी, डोमने वैष्णवी, दामने, अर्जुन गवनंकर, धीरज सवारे।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है धरसिम्बा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। दुर्गापारा संतोष नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमार रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। धमनी किरवई से समयलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, मुन्नि धीवर। सेक्टर 67 मेधाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आप आए बाहर आए का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, स्वर है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों के।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774।

0: अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है चानमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरेश कमल, सेतपाल भूमिका, सुशीला दादी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। आइए इनके फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म मदर इंडिया का गीत। संगीतकार हैं नवसाद अली, इसे आवाज़ दिया है मन्ना डे ने।

अगला फरमाइश हमें लिख भेजा है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेश नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, एड्रोडम थाने के पास वन्ना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललित नारायण खर्चे, जादुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, फिरोज आलम, चांदनी नाज, आलम शेख। अगला फरमाइश हम अगला गीत हम सुनवा देंगे, फिल्म अमानत का गीत है, गीतकार है, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11:55 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, ईकेवाईसी और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 107

0: 6 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री परिषद ने धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आयोजित 16 दिवसीय कला प्रशिक्षण शिविर आकार का कल रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर में प्रदेश भर के 1,281 प्रतिभागियों ने 16 कला विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं से जोड़ना समय की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलौदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे हैं।

0: थे ना?
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
0: जी,
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
0: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
0: जी,
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाए पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ, बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी,
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी,
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
0: जी,
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: है। फिर क्या होता है विमलेश?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी,
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है।
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उस

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना

0: चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बने?
1: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा, कमल जी,
1: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
1: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओह,
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
1: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
1: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
1: मतलब?
0: मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है।
1: जी।
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन। कार्यक्रम चयन में आज का विषय है मदद। मदद की एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बड़ी उम्मीद ला सकती है। जो हाथ दूसरों को संभालते हैं वही समाज को मजबूत बनाते हैं। दूसरों के मदद के लिए बढ़ाया हुआ हाथ सबसे खूबसूरत होता है। आइए सुनते हैं मदद का संदेश देता हुआ गीत। फिल्म का नाम है नया दौर और इस गीत के लेखक हैं शाहिर लुधियानवी। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

इस गीत के बाद हमने अगला शब्द चुना है सपने। सपने वो जो रोशनी है अंधेरी मंजिल की। जो सपनों पे विश्वास करते हैं अक्सर वे ही कामयाब होते हैं। तो लीजिए सुनिए आराधना फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं एस डी वर्मन और गाया है किशोर कुमार ने।

0: आप सुन रहे थे फिल्म आराधना का गीत किशोर कुमार के आवाज़ में। अगला शीर्षक है पलके। पलके जिसे आँख की हिफाजत नहीं करती बल्कि अनकहे जज्बात भी छुपाए रखती हैं। सुनिए प्यारा सा गीत फिल्म शहर का। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और आवाज़ है श्रेया घोषाल की।
1: क्या
0: माफ़ कीजिएगा, उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज़ में।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777423006000।
2: अगला शीर्षक है जज्बात। जज्बात वो आईना है जो दिल की बात बयां कर देते हैं। लफ्ज़ खामोश रहे तब भी ये आँखों से सफ़र कर लेते हैं। लीजिए सुनिए फिल्म निकाह का गीत। गीतकार हैं हसन कमल, संगीतकार हैं रवि और इसे गाया है सलमा आगा ने।

खुशियाँ वो धूप है जो हर गम का अंधेरा मिटा देती है। एक सच्ची मुस्कान जिंदगी की राहों को रोशन बना देती है। आइए अगली फिल्म का गाना सुनाते हैं आपको, मन फिल्म का। संगीतकार है संजीव दर्शन और इसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर

0: कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण।

किसान औसत 70% अनाज भोजन बीज एवं बिक्री के लिए भंडारित करते हैं और भंडारण के दौरान अनाज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती है। इस गुणवत्ता को फसल कटाई के बाद बीजों को कम नमी और कम तापमान पर रखने से काफ़ी समय तक रोका जा सकता है। बीजों के भंडारण के स्थान पर जहां अधिक नमी हो वहां बीज में कई प्रकार के कीट व कवकों का बीज पर आक्रमण हो जाता है। इससे बीजों की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्कृत बीज का यदि उचित समय में देखभाल एवं भंडारण नहीं किया जाए तो इसका प्रभाव बीजों के अंकुरण क्षमता पर भी पड़ता है। इसके कारण लगभग 10% अनाज बर्बाद हो जाता है। भंडार गृह के लिए महत्वपूर्ण बातें। बीज को भंडारित करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भंडारण के लिए स्थान का चुनाव। किसी भी जगह बीज को भंडारण करना है वह स्थान आसपास के स्थान से ऊंचा होना चाहिए तथा उस स्थान पर पानी नहीं भरना चाहिए और वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जहां दीमक का प्रकोप हो वहां भंडार गृह नहीं होने चाहिए। भंडार गृह की दीवारों में किसी प्रकार की दरारें नहीं हो क्योंकि वे कीड़ों के प्रजनन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भंडार गृह की खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए तथा छाया वाले स्थान पर होने चाहिए। भंडार गृह की सफाई। भंडार गृह की सफाई समय समय पर करते रहनी चाहिए। भंडार गृह में खाली स्थान बोरियों के अलावा की सप्ताह में एक बार तथा बोरियों की एक माह के अंतराल पर सफाई करनी चाहिए। दीवारों एवं छत की गंदगी दिखते ही सफाई करनी चाहिए तथा कचरे को जला देना चाहिए। गेहूं जौ बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग। डेल्टा मेथिन 4 मिलीलीटर को आधा लीटर पानी में मिलाकर प्रति 100 किलोग्राम बीज की दर से सीड ड्रेसर में मिलाकर एवं बीज को अच्छी तरह सुखाकर बोरियों में एक साल तक कीट रहित भंडारण किया जा सकता है। नीम एवं पलाश के तेल अखाद्य तेल का 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग कर गेहूं के बीज को एक वर्ष तक घुन से सुरक्षित किया जा सकता है। दलहन बीजों के लिए कीटनाशक का प्रयोग। थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो का उपयोग कर बीज को धौरा कीट से सुरक्षित रखा जा सकता है। चने के बीज को मूंगफली या सरसों के तेल से 10 मिलीलीटर प्रति किलो की दर से उपचारित कर धौरा कीट के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सकता है। बोरियों पर डेल्टा मेथ्रिन 2.5 WP या 125 PM से अच्छी तरह छिड़काव कर सुखा लेना चाहिए। फिर इनमें

0: फ्रिज भर कर रखने से 6 महीने तक कीड़ों से सुरक्षित रखा जा सकता है। मूंग के बीजों को थायोमिथाक्स 70 WS 2.8 मिलीग्राम की दर से डेल्टा मेथ्रिन 2.5 WP 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करने पर उनका भंडारण जूट की बोरियों में 9 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है और बीजों की अंकुरण क्षमता भी बरकरार रहती है। कपास के बीजों का भंडारण। कपास के बीजों में छुपी हुई गुलाबी सुंडी को नष्ट करने के लिए बीजों को धूमित करने हेतु 40 किलोग्राम बीज में एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम मात्रा मिलाकर इसे हवारोधी बनाकर 24 घंटे तक बंद रखने के बाद भंडारित करें। धूमित करना संभव न हो तो तेज धूप में बीजों को पतली तह के रूप में फैलाकर 6 घंटे तक तपन देवें एवं बाद में भंडारण करें। भंडारण के लिए 700 गेज पॉलीथीन बैग का प्रयोग करें। इसमें सब्जी फसलों जैसे मिर्च प्याज आदि का सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है, लेकिन 700 गेज पॉलीथीन का ही प्रयोग करें एवं बैग में भरने से पूर्व बीज पूरी तरह सूखा होना चाहिए। बीजों को कीट रहित करने के लिए फ्यूमिगेशन पद्धति का प्रयोग करें। फ्यूमिगेशन सल्फास की गोली 3 ग्राम प्रति घन मीटर भंडारण की जगह की दर से हवा बंद भंडारण ग्रहों का फ्यूमिगेशन करना चाहिए। ऐसा करने पर बीज 1 सप्ताह में कीट रहित हो जाएगा। अन्य फसलों के लिए बीज भंडारण में सावधानियां। खलिहान से बीज को अच्छी तरह से सफाई के बाद ही भंडारण करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

संगी हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रही, शिखर में हमन ला पहुँचना है तो हमन ला ताकत चाहिए, और चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो चाहे हमर पैसा हो। तो यही सुघर विचार कर संगे आज घर गुसाइन कार्यक्रम में राउर स्वागत करत हन। आज संगे रही रमा बहिन, जय जोहार, राम राम। देखिए आज बहुत खास एक ठन दिन आ है, विश्व नेत्रदान दिवस। देखिए हमन कथी ना और सुनती भी कि नेत्रदान महादान, तो एकर उद्देश्य का है कि जैसे हमन नहीं रहती, ये जिंदगी हमर चले गई, हमर ये दुनिया में नहीं रहती, तो ओ समय हमर आँखिला हमन दान करे सकी, एकर बर सब झेला प्रेरित करना। देखिए हमर जो आँखि के कार्निया रहल, माने कि आँखि के पारदर्शी जो हिस्सा रहल, ओकर ले जुड़ा बीमारी चाहे अंधापन के बारे में जागरूकता फैलाना, ये जो विश्व नेत्रदान दिवस है एकर मुख्य उद्देश्य है। और जैसे हमन देखी मृत्यु हो गई सा है तो 6 घंटा के अंदर हमन ला नेत्रदान करना जरूरी है, और जे मन आँखी से देखे नहीं सके तो ओमन कर आँख कर रोशनी मिल जाए, हमर कर आँखी जो है ओमन ला भेटाया जाए, ये कितना बढ़िया ना है। अब ऐसा नहीं है कि हमन चश्मा लगा थी, चाहे हमन मधुमेह से पीड़ित थी, चाहे ब्लड प्रेशर से हमन पीड़ित थी, ऐसे कोनो भी मनसे हो तो नेत्रदान नहीं कर सके, ऐसे नहीं हो। हमन सब जे अपन आँखी के दान करे सकत हन, और जो आप हमर आसपास के नेत्रदान करे कर बैंक रहल वहाँ में हमन ला पंजीकरण कराना चाहिए, और अपन परिवार ला एकर बारे में बताना चाहिए। देखिए हमन ला सब जन ला जागरूक होना चाहिए, और एकर बर हमन जागरूक रहब तबे अपन नेत्रदान करे सकत हन। आओ देखिए एक ठन आओ बहुत जरूरी आज गोठा है कि हमर जो नोनी मना है ओमन पढ़ता है आगू बढ़ता है, तो देखिए आज कर समाज में जो पहले कर मानसिकता रहीस ओ हर बदलता है कि अब नोनी मन आगू बढ़ता है, हमन ला बढ़ाना है और पढ़ाना है, और ये करतीहा करना है कि ओमन पढ़ लिख के को अच्छा करें। आज बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, चाहे वो खेल के क्षेत्र हो गईस, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र हो गईस, हर क्षेत्र

0: में हमारे बेटी मन आगू बढ़ता है। और हर घर में बढ़िया शुरुआत होता है कि हमार नोनी मन भी आगू पढ़ता है और बढ़ के अपन पैर में खड़ा होता है। और ओमन कर मनोबल बढ़ाए बर हमन ला हमेशा कोशिश करना है। और कभो ओमन ला कुछ असफलता भी मिलता है तो ओह में मन ला ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई ओमन के मन ला हमन ला गिराए दी, ऐसे नहीं करना है। ओमन ला समझाइश देना है और प्रेरणा देना है कि ओमन आगू बढ़े। और एक खास गोठा है कि जब ओमन कोनो भी क्षेत्र ला चुनाता है तो ओमन ला पूरा स्वतंत्रता मिले कि अपन स्वतंत्रता से ओमन अपन क्षेत्र ला चुने सकता है। कोनो प्रकार के दबाव ओमन ला नहीं देना है और शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे जो नोनी मना है ओमन ला बढ़ाना है और अच्छा मजबूत बनाना है। और जरूर सिखाना है कि शारीरिक रूप से हमन कैसे मजबूत बनी और मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनी। हर क्षेत्र में देखिए आज नोनी मन का नाम आ है। और आर्थिक रूप से सबल होना, अपन पैर में खड़ा होना बहुत जरूरी है। देखिए आज हमार गोट बात क्रम है तो एला भी हमन सुनब। हमार संगी मन कर ईमेल आईसा है ढेरे कन तो ओमन कर पसंद कर गीत भी आ है। बकीर एकर ले पहले लगी सुनी संदेश।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: आई एम हियर। तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: हाँ तो देखिए सुनत रहे ना जे संदेश लहन। आओ हमार गुड बात क्रम आ जा है तो इसमें जमो संगी मन कर हमन स्वागत करती। आ देखिए ढेरे कन भाई चिट्ठी भी आईसा है और ईमेल भी आईसा है तो ये जो पहला ईमेल है एला पढ़ती। हमार संगी मना है अमन कर ईमेल हमार जगाते रहे और चिट्ठी भी भेजत रहते। एमन आ है सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ले प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार राम खिलावन सिंह पैकरा लिखत हैं कि घर गुसाइन प्रस्तुत करता मनला हमार डहर ले राम राम जय जोहार। तो हमार डहर ले भी भैया राम राम जय जोहार है। आ लिखत हैं कि हमरे मन सबो कार्यक्रम ला ध्यान से सुनथन। आ दिनांक 8 जून में घर गुसाइन कार्यक्रम अच्छा लगीस और रमा दीदी ला बधाई। तो भाई मोर कति ले भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देहत हूँ कि भाई राउर ए ईमेल भी आईसा है और कार्यक्रम ला सुने रहा और पसंद भी करे हा और हमारे कार्यक्रम में का सुनना चाहा था एला भी जरूर लिखिया। और तो भाई नियमित श्रोता है हमारे कार्यक्रम के और ईमेल भी आत रहे तो ऐसने ईमेल ला भेजत रहिया कार्यक्रम ला सुनत रहिया। और इनकर पसंद कर आहे ये छत्तीसगढ़ी गीत तो लेगी सुनी।

हाँ संगी हो बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत रहीस विजय सिरदार और संगता कर गाल रहीस। देखिए वो जो ईमेल आया है हमारे संगी मन करा है, ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ ले, करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, दिनेश वर्मा और वहाँ हैं हमारे संगी मन ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर सरगुजा ले। हमार नियमित संगी मना है, एमन का चिट्ठी भी आत रहे, ईमेल भी लिखत रहते। जीवधन सिंह पैकरा, घूर्णी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ईश्वरा पैकरा, एमन लिखत है कि हमन कार्यक्रम ला सुनथी और कार्यक्रम हमन ला बहुत अच्छा लगेल आ अलग अलग भाई भेंटवार्ता भी लानत रहता, अलग अलग विषय में डॉक्टर मन भी आत रहते और वकील बहनी मन भी आत रहते, तो हमन सुन के लाभ उठाथन और बहुत सारा चीज़ के बारे में जानकारी भी मिलत रहते, स्वास्थ्य कर बारे में, शिक्षा कर बारे में, तो सब चीज़ का लाभ हमन उठाथी। तो इतना बढ़िया घर गोसाइन कार्यक्रम पर ढेरे धन्यवाद। तो हमार कति ले भी ढेरे धन्यवाद है कि हमन ला ईमेल भेजी ना है। अब इनकर पसंद कर लेगी सोनी ए भोजपुरी गीत।

हाँ तो देखिए हमन बढ़िया ने भोजपुरी गीत लहा सुनत रहन, राम लल्लू पांडेकर गाल रहिस। अब हमर संगी मन करी मेला है, ये आ है रानी गांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू एमन लिखत आ है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहनी मन ला राम राम, हमर कति ले भी राम राम जय जोहार। लिखत आ है 3 जून के घर गुसाइन कार्यक्रम ला सुघर सजाए के लाने रहिस हमर लाली बहिन। ए दिन कार्यक्रम के शुरुआत में विश्व साइकिल दिवस के ऊपर चर्चा सुने बर मिलिस और यही दिन क्रम में हमर चिट्ठी पाती और हमर पसंदीदा गीत घलो रहीस, अजय में हमन सुघर सुघर छत्तीसगढ़ी सरगुजिया भोजपुरी गीत सुने और ए दिन के सुघर मनभावन प्रस्तुति पर लाली बहिन ला अंतरसले गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो संगी हो इतना बढ़िया हमारे कार्यक्रम ला सुने हा 3 तारीख के और बढ़िया ओकर समीक्षा भी लिख के भेजे हा कि भाई का का सुने हा और चिट्ठी पाती, मतलब हमारे यही गोठ बात एक क्रम है कि भाई ईमेल आते चिट्ठी आते संगी मन कर और हमन ओला शामिल करती। तो इतना बढ़िया ईमेल पर ढेरे ढेरे धन्यवाद। हमन यही कहब कि भाई कार्यक्रम ला सुनत रही और अपन जो भी विचार आ है कार्यक्रम कर बारे में हमन ला भेजत रही और इनकर पसंद कर लेगी सुनी ए छत्तीसगढ़ी गीत।

हाँ तो संगी हो, ये भोजपुरी गीत सुनत रहन हमार संगी मन कर पसंद कर रहीस आओ गाल रहीस मोहम्मद खलील और संगता मन कर। देखिए हमार आओ थोड़कुन बेरा बाची सा है और ईमेल आ है इंदिरा विहार दिल्ली ले बेबी अंसारी निशा और डब्लू अंसारी चमनपुर मोरबी ले प्रमिला जेटली दीपक और आशू जेटली एमन आ है चमनपुरा मोरबी ले और इनकर पसंद कर हमन गीत सुना बोकर ले। पहले गोइट करी ची जो हमार माटी आ है कि माटी के संरक्षण पर हमन ला काम करना चाहिए थोड़कुन काबर की माटी से ही हमन कर बहुत सारा चीज होता है। चाहे हमार अनाज के संरक्षण कर बात करी चाहे हमार अनाज भेटाता है खाए बर चाहे अनाज ले लेवा भाजी साग ले लेवा सब जात वो जो है वो हमार माटी ले भेटाता है। और जब हमार अनाज संरक्षण के गोइट करती तो जब हमार माटी हर बढ़ियन हो ही उपजाऊ तबे हमार जो जगह थी वो में चाहे तो हर चावल हो जाए चाहे तो हमार गेहूँ हो जाए सब ज़्यादा बढ़ियन हो ही। कचरा हमारे नहीं फैलाना है प्लास्टिक के उपयोग नहीं फैलाना है और का है कि अलग अलग कचरा लाओ में माटी में नहीं मिलाना है ऐसे हमन करब तो जो हमार माटी कर उपजाऊपना है वो हर खराब हो जाए। हमला ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हमार माटी हर उपजाऊ बने रहे और हमें हमन जो भी उगा थी वो हर बढ़ियन होए। अब देखिए हमार संगी मन कर पसंद कर ये गीता है तो लेगी ला सुनी।

संगी हुए छत्तीसगढ़ी गीत रहीस ध्रुआ राम मरकाम और संगता कर गाल एकट। संगे संगे हमार कार्यक्रम घर घुसैन कर बेरा हुआ है, तो चले चलते ही कहब कि हमार कार्यक्रम ला सुनत रही और कैसन लागत है ला बतात रही और घर घुसैन AIR@gmail.com एमे अपन ईमेल ला भेजत रही। आज रमा बहिनी है चलत है, फिर भेट बो। राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गुसाइन। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। पहला ईमेल प्राप्त हुआ है अकोला से श्रेयस रॉय, अलका रॉय, दरियापुर, बालभी से गजानन येल्ले, नवदीप येल्ले, विश्वदीप येल्ले, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, रितिका, बलवीर सिंह, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्हे अन्विका बेबी, साथ ही पेहरा बाजार झुमरी तिलैया गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता, मुन्नी देवी, रिया जिया, टुसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र तमिलनाडु से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म कभी कभी से। संगीतकार हैं खयम, आवाज़ दिया है साहिर लुधियानवी ने।

इस गीत के बाद अगला फरमाइश लिख भेजा है विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले डॉक्टर अपेक्षा अमित दीवान

आदेश कुमार काले। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिक्रेस्ट्रो, रोजी डिक्रेस्ट्रो, पर्ल डिक्रेस्ट्रो, विलिस डिक्रेस्ट्रो। श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। पद्मा टॉकेज नेपाल नगर से इन्होंने फरमाइश किया।

श्रोता सुदर्शन सा, पल्लवेशा, प्रखरशा और कुशल सा, पद्मा टॉकेज नेपाल नगर से इन्होंने फरमाइश किया है। इनके फरमाइश पे सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है सत्ते पे सत्ता, संगीतकार हैं आरडी वर्मन, गीतकार हैं गुलजार, आवाज़ दिया है किशोर कुमार और आरडी वर्मन ने।

इस गाने के बाद अगली फरमाइश मिली है, कूड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी प्यारा मुन्ना हिमाक्ष, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखन लाल देवांगन, इन्होंने पलारी से भेजा है अपनी फरमाइश। सरगुजा मैनपाट से सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा, आसमा थापा, सरफुद्दीन बिलदार, मेराज अहमद बिलदार, वसीम अकरम बिलदार, उल्ला वली बिलदार, डब्लू वली बिलदार और कल्लू मल्लू कालिया बिलदार, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू रसेड़ा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, संतोष काले, तेजा काले, लोकेश काले, गजानंद सलोनकर, आप सभी के फरमाइश पर सुनाते हैं अगले गीत। गीत का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। निर्देशक हैं आदित्य चोपड़ा, संगीतकार हैं जतिन ललित, गीतकार हैं आनंद और आनंद बख्शी।

ईमेल के अगले कड़ी में हमें लिख भेजा है बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू हेमंत नामदेव, शास्त्री नगर बीड शहर से आशा सपकाल, किशन सपकाल, विशाल सपकाल, ग्राम लसुड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र दांगी, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर मोहम्मद साकी पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगेर, शाफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार, बटीडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति मिरी, जानवी दीक्षांत मिरी, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, अनारकली बाजार जगराओ पजाव से, ग्राम पंचायत खोंधला उदयपुर सरगुजा, जीवधन सिंह पैकरा, घूर्णी पैकरा,

करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी। बेलडीहा बस्तर छत्तीसगढ़ से शिवप्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना, यमुना कुमारी, अंजू मंजू और कुमारी युवती देवास। इन सभी के फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म

लीजिए सुनिए फिल्म जब वी मेट का गाना। संगीतकार हैं संदेश सांडेलिया, गीतकार हैं कामिल, और इसे गाया है मुस्ताद रशीद खान ने।

अगला फरमाइश लिख भेजा है मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, इन्होंने लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से मेल भेजा है। वडेंखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख उल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आशिफ शेख, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी, बड़वार जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, बोरखेड़ा पितरमाल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुनत, चेतना नाहटा। इन सभी के फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म परिणीता का ये गाना प्रस्तुत है आपके लिए। इसे गाया है स्वाति आनंद स्वानंद किरकिरे ने और इसके गीतकार हैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में

0: शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIN News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले

तीन दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले तीन दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं
1: रजनीश।
0: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और हर वक्त की तरह एक नया विषय और हमारे बीच विशेषज्ञ भी हैं और आज बात करेंगे कुछ हम कुछ ऐसी ही जिससे कि हमारे किसान भाइयों की जो आय की जो वृद्धि है वो दोगुनी हो जाए, चारगुनी हो जाए और साथ ही साथ उनका कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा।
1: बिल्कुल सही कहा सीमा। और देखिए ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विषय है वो है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, कि कृषि आय वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण किस तरह से होता है, इस विषय पे आज हम
2: आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगला गजल पेश है जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज में।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगला गजल पेश है मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के आवाज में।

लीजिए सुनिए आप सभी के पसंदीदा गज़ल तलत अज़ीज़ के आवाज़ में।

इसी के साथ कार्यक्रम गीत गंदा यहीं समाप्त होती है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। आज रात 10:30 पर सुनिएगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। रात 10 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। 9:30 पर हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 8 बजे हम प्रस्तुत करेंगे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। 7:20 पर पेश करेंगे कार्यक्रम चौपाल, जिसमें ड्रोन तकनीक से आधुनिक खेती पर होगी चर्चा। साथ ही करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना पर बातचीत। आजकल क्रम में मानसून आधारित धान की खेती में जल प्रबंधन की भूमिका पर करेंगे चर्चा। 6:20 पर

सुनेंगे कार्यक्रम गोधुली में सरगुजिया लोकगीत मोहर साय और साथी के आवाज में, और सरगुजिया लोकगीत जवाहिर राम राजवाड़े और साथी किसुन खेल के आवाज में। शाम 6:05 पर सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु। 5:23 पर सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे है। मीडियम वेव पर अब हमारी सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में पुनः हाजिर रहेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, नवापारा, फुलवार, शिवपुर, चिनिया, नीलकंठपुर, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, अखोरा, जवाखाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोर की पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टान पारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये लुटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये सलिहा भाटा, भेलवाटार, सर्दूकला, सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 71 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, कया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं।

0: हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुमंगल अरोरा की आवाज़ में इस पारंपरिक भजन के साथ।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रा सिंह की आवाज में मीराबाई रचित ये भजन।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या में अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज में ये भजन, मोहन शर्मा और श्यामराज की लिखित ये रचना, ईरा रोशन का संगीत है।

श्रोताओं, अनुप जलोटा की गाय इसी भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

जो हर बात पर शोर मचाते हैं वो अक्सर कम महसूस करते हैं, और जो चुप रहकर सब सह जाते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर। दोस्तों, हमारी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हर एहसास को शब्दों में बयां कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जज्बातों को अपने दिल में ही छुपा कर रखते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें हम अक्सर खामोश लोग कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये लोग खामोश क्यों रहते हैं? क्या इनके पास इतना कुछ कहने के लिए नहीं होता? नहीं, असल में इनके पास इतना कुछ होता है कि वे उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। दोस्तों, खामोशी का मतलब खालीपन नहीं होता। कई बार खामोशी के पीछे भावनाओं का एक समंदर छुपा होता है, एक ऐसा समंदर जिसमें यादें होती हैं, सपने होते हैं, दर्द होता है, उम्मीदें होती हैं, और बहुत सारे अनकहे शब्द होते हैं। खामोश लोग अक्सर दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। वे किसी के चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पहचान लेते हैं। वे किसी की आवाज़ में छुपी उदासी को भी महसूस कर लेते हैं, क्योंकि जो खुद गहराई से महसूस करता है वही दूसरों के एहसासों को समझ पाता है। दोस्तों, कभी कभी हम किसी शांत व्यक्ति को देखकर सोच लेते हैं कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। उसे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बस वो उसे जाहिर नहीं करता। वो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वो हर बहस में जीतना नहीं चाहता। वो हर दर्द को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर बात शब्दों से नहीं कही जाती, कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती है। दोस्तों, खामोश लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वे रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर वे किसी को अपना मान लें तो पूरे दिल से निभाते हैं, और अगर कोई उनका दिल तोड़ दे तो वे शिकायत कम करते हैं और चुप ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका दर्द उनकी खामोशी में बदल जाता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर तेज़ आवाज़ को महत्व देते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसे ज़्यादा सुना जाता है, लेकिन कई बार सबसे गहरी बातें वही लोग समझते हैं जो कम बोलते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कम बोलता है, तो उसकी खामोशी को नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी उसके पास बैठिए, उसका हाल पूछिए। हो सकता है वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा हो, लेकिन हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो ये ज़रूरी नहीं, और हर खामोश इंसान उदास हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि खामोश लोग चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। दोस्तों, कई बार खामोशी इंसान की ताकत भी बन जाती है। जब दुनिया शोर मचा रही होती है, तब खामोश व्यक्ति खुद को समझ रहा होता है। वो अपने संघर्षों से लड़ रहा होता है, और वो धीरे धीरे खुद को मजबूत बना रहा होता है। याद रखिए, नदी जितनी गहरी है उसका बहाव उतना ही शांत होता है। उसी तरह इंसान जितना गहरा होता है वो उतना ही कम बोलता है। दोस्तों, हमें कभी किसी भी इंसान को उसकी खामोशी से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई बार जो लोग सबसे कम बोलते हैं वही सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं और सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो कम बोलता है, तो उसकी खामोशी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर खामोश के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे कुछ अनकहे जज्बात। तो दोस्तों, इसी के साथ ही सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जुर्म से, जिसमें आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की, गीतकार हैं इंदिवर और पयाम, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे क्रम समय की दास्ता की ओर।

आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है हमारे क्रम समय की दास्तां में। दोस्तों, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक इतिहास होता है और अपनी एक पहचान होती है। आज समय की दास्तां में हम बात करेंगे एक ऐसी पवित्र और ऐतिहासिक नगरी की जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है। दोस्तों, चित्रकूट केवल एक स्थान नहीं बल्कि आस्था, भक्ति, प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का एक लंबा समय चित्रकूट में बिताया था। यही वो भूमि है जहां प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर मिलन दिखाई देता है। लेकिन इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक सदाबहार गीत के साथ।

दोस्तों, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ बहने वाली मंदाकिनी नदी पूरे क्षेत्र को एक अलग ही पवित्रता प्रदान करती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ आए थे, तब ये भूमि उनके चरणों से धन्य हो गई थी। चित्रकूट का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है रामघाट, जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। शाम के समय यहाँ होने वाली आरती का दृश्य मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। और अब मौसम की बात हो, बारिश की बात हो और प्रकृति की सुंदरता की बात हो, तो एक गीत याद आ ही जाता है। तो दोस्तों, सुने ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मंजिल से, जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार की, गीतकार हैं योगेश और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

स्थित कादमगिरी पर्वत को चित्रकूट का हृदय माना जाता है। श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हैं और मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य पूरी होती है। इसके अलावा हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भरत मिलाप मंदिर जैसे स्थान भी लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। दोस्तों, चित्रकूट की हर पहाड़ी, हर नदी और हर घाट मानो रामायण काल की कहानियाँ सुनाता है। और अब वक्त है एक ऐसे गीत का जो प्रकृति की सुंदरता को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। तो सुनिए ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रोजा से, जिसमें आवाज़ें हैं SP बाला सुब्रमण्य।

एक बार फिर स्वागत है आपका समय की दास्तां में। दोस्तों, चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन ही नहीं करता बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव भी करता है। शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ की हरियाली, पहाड़ियों और मंदाकिनी नदी का शांत प्रवाह मन को एक नई ऊर्जा से भर देता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर कहते हैं कि चित्रकूट पहुंचकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। दोस्तों, जब बादल बरसते हैं और चित्रकूट की वादियाँ हरियाली से भर जाती है तब यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। और इसी एहसास को और खूबसूरत बनाने के लिए पेश है अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुरु से, जिसमें आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं AR रहमान।

दोस्तों, आज की समय की दास्तां में हमने जाना चित्रकूट के बारे में। एक ऐसी पावन भूमि जहां भगवान श्री राम की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं, जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और जहां पहुंचकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। यदि आपको कभी अवसर मिले तो चित्रकूट की यात्रा अवश्य कीजिए, शायद वहाँ की शांति आपके मन को एक नई दिशा दे जाए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ ही हमारा आज का क्रम समय की दास्तां बस यहीं तक।

0: श्रोता, अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना

0: कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है चुनौतियां, संकलन एवं वाचन स्वर है शबनम खानम के।
3: जीवन की अग्नि परीक्षा और आत्मबल का उत्कर्ष होती हैं चुनौतियां। ये जीवन के मार्ग में आने वाले वे कठिन मोड़ हैं जो मनुष्य की क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास की वास्तविक परीक्षा लेते हैं। ये केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे अवसर भी होते हैं जो व्यक्ति को भीतर से अधिक दृढ़, परिपक्व और प्रकाशमान बनाती हैं। जीवन यदि एक शांत सरिता है तो चुनौतियां उसके तीव्र प्रवाह की वे लहरें हैं जो उसे गतिमान बनाए रखती हैं। बिना संघर्ष के प्राप्त सफलता वो गहराई नहीं होती जो कठिनाइयों को पार करके अर्जित उपलब्धियों में दिखाई देती हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर और अधिक कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी चुनौतियों के ताप में तपकर अधिक उज्ज्वल बनता है। चुनौतियां यानी अंधकार में जलती आशा की दीप शिखा। चुनौतियां जीवन का वो अध्याय हैं

0: जिन्हें पढ़े बिना कोई भी मनुष्य अनुभव, परिपक्वता और आत्मबल की वास्तविक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। ये केवल कठिन परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि जीवन की वे मौन शिक्षिकाएं होती हैं जो संघर्ष के माध्यम से मनुष्य को उसकी छिपी हुई क्षमताओं से परिचित कराती हैं। जब जीवन सरल और अनुकूल होता है, तब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान नहीं पाता, किंतु जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं, वैसे ही उसके भीतर साहस का एक नया स्रोत जागृत होने लगता है। यही चुनौतियों का सबसे बड़ा उपहार है। वे हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का परिचय कराती हैं। प्रकृति का प्रत्येक दृश्य संघर्ष और धैर्य की प्रेरणा देता है। सूर्य प्रतिदिन अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाता है। नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं छोड़ती। वृक्ष आंधियों के बीच भी अपनी जड़ों को थामे रखते हैं। प्रकृति का ये मौन संदेश स्पष्ट है कि कठिनाइयां मार्ग रोकने नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की क्षमता सिखाने आती हैं। चुनौतियां मनुष्य को भीतर से दृढ़ बनाती हैं। वे उसे ये सिखाती हैं कि हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। कठिन समय में धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही वे तीन दीप होते हैं जो जीवन के अंधकारमय मार्ग को भी प्रकाशित कर देते हैं। जब मनुष्य संघर्षों से गुजरता है, तो उसके भीतर संवेदनशीलता भी बढ़ती है। वो दूसरों के दुख को बेहतर ढंग से समझने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में कठिनाइयां देखी होती हैं, वे अक्सर अधिक विनम्र, सहृदय और करुणामय बन जाते हैं। वाणी और विचारों का प्रभाव चुनौतियों के समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने शब्दों में आशा और अपने विचारों में विश्वास बनाए रखे, तो सबसे कठिन परिस्थिति भी धीरे धीरे सरल होने लगती है। निराशा मनुष्य को भीतर से कमजोर करती है, जबकि आशा उसे बार बार उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है। इतिहास के महान व्यक्तित्वों का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि चुनौतियां सफलता की राह में बाधा नहीं, बल्कि सफलता तक पहुंचने का मार्ग होती हैं। जिन्होंने कठिनाइयों के सामने धैर्य नहीं खोया, वही आगे चलकर प्रेरणा के उज्जवल स्तंभ बने। आज का समय अनेक प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है, प्रतिस्पर्धा, तनाव, असुरक्षा और अनिश्चितता। परंतु वही व्यक्ति जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त करता है जो परिस्थितियों के दबाव में टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और अधिक मजबूत बन जाता है। अतः चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, उन्हें जीवन की अग्नि परीक्षा समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई अपने भीतर एक नई संभावनाएं छिपाए रखती है। हर संघर्ष आत्मबल को निखारता है और
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शबनम खानम के स्वर में विषय चुनौती पर विचार बिंदु। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार।
2: समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे है जारी। और राज्यपाल रमन डे का है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहिन। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी है 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहीन। उमन पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड ला तोड़ी ने जौन पहली घाव 13 मई 1952 के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहीन और 27 मई 1964 तक पदमा बने रहीन। पंडित नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन के रहीस। 26 मई 2014 ले आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री श्री मोदी के सरलक कार्यकाल अब 4,300

99 दिन के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मन नरेंद्र मोदी ल देश के सबले ज्यादा बेरा तक सरलग निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मा बधाई दिन है। यही बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल है आज एक प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ल सरलग दो कार्यकाल तक सबले ज्यादा बेरा तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मा बधाई दिन नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान सदस्य मन प्रधानमंत्री श्री मोदी पर सम्मान जतैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठक के अगुवाई करही। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के मुताबिक एसओ के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। परिषद के बैठक में ये सोच ला साकार करे खातिर गोट बात करे जाही। परिषद के बैठक में मुख्यमंत्री उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचा में गोट बात करही जोन चार मुख्य स्तंभ आधारित हवे। बैठक में पाछू बछर 26-28 दिसंबर के दौरान राखे गए मुख्य सचिव के 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन के सिफारिश में घलो गोट बात होही। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले लागू होही। एमा छत्तीसगढ़ ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन जारी करेगे है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री मन संग हुए वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दीन। ये रकम ले ग्राम पंचायत ला सोझे फायदा मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास काम ला गति मिली। बैठक में श्रमिक मन ला बेरा में मजदूरी भुगतान, EKYC और डिजिटल व्यवस्था ला मजबूत करे मा जोर देगी। बिलासपुर में काली राखे गए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कहिन के विकसित भारत के आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी है। ओमन कहिन की बछर 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में हर एक नागरिक के महत्ता की भूमिका हवे। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू व केंद्र सरकार के आने आने जन कल्याणकारी योजना और उपलब्धि लबतात राष्ट्र निर्माण पर सामूहिक प्रयास के आह्वान करें। उमन कहिन की प्रधानमंत्री के अगुवाई में देश आने आने क्षेत्र में तेजी ले बढ़वार करत है। राज्यपाल रमन डेका है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर कहिन है। राज्यपाल ले आज लोकभवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल डॉक्टर सिंह ले विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्र में शिक्षा के स्थिति और जरूरी शैक्षणिक सुविधा के संबंध में गोट बात हुई है। राज्यपाल ले प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा समेत आने आने अधिकारी मन घलो भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल शहर और नवा रायपुर में लगाए गए पौधा के रख रखाव में विशेष ध्यान देबर कहिन है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में 28 जून के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चला जाही। एमा जन्म ले 5 बछर तक 3,45,000 ले ज्यादा लेका मल्ला पोलियो के खुराक पियाए के लक्ष्य रखे गए है। रायपुर जिला में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाही। अभियान के दिन जौन लैका मन पोलियो के खुराक नहीं पी पाही ओमल्ला अवैया 2 दिन तक घर घर जाके खुराक दे जाही। छत्तीसगढ़ में रद्दा दुर्घटना में कमी लाए बर तकनीक आधारित निगरानी, बने चालक प्रशिक्षण और यातायात नियम के पालन में जोर दे जावत है। नवा रायपुर में रखे गए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा के संगे संग मंत्री केदार कश्यप तैयारी के समीक्षा करी। बैठक में बताया गया है कि जनवरी ले मई 2026 तक 31,000 ले ज्यादा गाड़ी के फिटनेस जाँच करे गए है। उन्हें ANPR कैमरा और आने तकनीकी माध्यम ले 61,000 ले ज्यादा चालान जारी करेंगे है।
आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है काली रायपुर क्षेत्र के आने आने आवासीय कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटी के अगुवाई करैया मन संग बैठका करके उखर समस्या और सुझाव पर गोट बात करी। बैठका में रद्दा जल निकासी सार्वजनिक सुविधा ले जुड़े मुद्दा उठाएगी से श्री चौधरी है संबंधित अधिकारी मन

0: ला समस्या के समाधान करे बर कार्रवाई करे के निर्देश दीन। रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR ह अनुसूचित जाति उपयोजना मा धान बीज वितरण कार्यक्रम राखीन। ये दौरान पचेड़ा, बेलटुकरी और बिठिया गांव के 170 ले ज्यादा किसान मन ला उन्नत धान बीज बांटेगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर PK राय ह किसान मन ला संतुलित खातु बउरे और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन के जानकारी घलो दीन। कार्यक्रम के उद्देश्य उत्पादन ला बढ़ाना और किसान मन के आमदनी मा बढ़वार करना है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार मां पाछू 26 मई के होए एक ज्वेलरी व्यवसायी के हत्या और लूट के वारदात के खुलासा करत पुलिस 7 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के तीर ले करीबन 40 ग्राम सोना और 4 किलो ले ज्यादा चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में बउरे गाड़ी जब्त करे गए है। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा बतेन कि मुख्य आरोपी खुशीराम साहू बिहार और झारखंड के अपन संगी मन संग मिल के व्यापारी प्रदीप सोनी ले सोना चांदी ले भरे बैग लूटे के प्रयास करीन। व्यापारी है जब एकर विरोध करी तभे एक आरोपी है ओखर ऊपर गोली चला दीस जेमा ओखर मौत हो गए। एकर बाद आरोपी लूटे आभूषण लेके फरार हो गए। उमन बतेन कि बिलासपुर रेंज और गोरेला पेंड्रा मरवाही के पुलिस कार्रवाई करत छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में दबिश दे के 7 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस साले ओना धान खरीदी केंद्र मा 99 लाख रुपया ले ज्यादा के घोटाला के मामला मा 4 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। ये आरोपी मना बछर 2025-26 मा 3,140 कुंटल ले ज्यादा धान बिसाए के फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखा के घोटाला करीन। उन्हें बारदाना मा घलो हेरा फेरी करीन है। पुलिस है ये मामला मा पहली समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार कर ली है। बालोद जिला के डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल के टीम हा गांजा तस्करी के आरोप में 5 झीन ला गिरफ्तार करके उखड़ती ले 72 किलो गांजा बरामद करे हैं। जब्त करेगे गांजा के कीमत करीबन 26 लाख रुपया बताए जाते। मुखबिर ले मिले सूचना में पुलिस भेड़ी तिराहा तीर नाकाबंदी करके गाड़ी के जाँच करीन। यही बेरा 4 आने आने फटफटी ले ओडिशा ले मध्य प्रदेश ले जावत गांजा पकड़ेगी। पुलिस 4 आरोपी और फटफटी ला जब्त करे है। और अब थोरकुन समाचार सार मा। राज्य शासन है गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा ला अस्थायी रूप ले सहकारिता और रजिस्ट्रार और सहकारी समिति के आयुक्त नियुक्त करे हैं। और कबीरधाम जिला मा साइबर सेल और पुलिस के टीम है IPL क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा चलैया 2 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश का करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे है जारी। और राज्यपाल रमन डेका है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाय खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहीन। एकरी संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहरसाय और साथियों की आवाजों में इस सरगुजिया लोकगीत से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गुधुली आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए जवाहर राम राजवाड़े और साथियों की आवाजों में ये किसुन खेल गीत।

श्रोताओं, इस किशन खेल गीत के साथ ही कार्यक्रम गोधूली आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में फिल्म अंजाम का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम माधुरी में अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार है जतिन ललित।

फिल्म इतिहास के इसी गीत के साथ कार्यक्रम माधुरी आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: भी लगवा लो।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस

0: बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर बने रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। साथ ही यह 140 करोड़ भारतवासियों के अटूट विश्वास, सम्मान और श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को प्राप्त अभूतपूर्व जनसमर्थन का सशक्त प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस, मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। यह ढांचा 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने

के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पिछले वर्ष 26 से 28 दिसंबर के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार विमर्श होगा। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इस संबंध में कल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरिम आवंटन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि

0: मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरिम आवंटन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, EKYC और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्यपाल रमेन डेका ने राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने आवश्यक कदम उठाने को कहा है। राज्यपाल से आज लोकभवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने डॉ. सिंह से विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति और वहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 3,45,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर जिले में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। अभियान के दिन छूटे बच्चों को अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायपुर क्षेत्र की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। बैठक में सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं और अधोसंरचना विकास से जुड़े मुद्दे उठाए गए। श्री चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर भी जोर दिया। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार में बीते 26 मई को हुई एक ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 40 ग्राम सोना, 4 किलो से अधिक चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किए गए हैं।
1: 26 मई के शाम को कोटमी साप्ताहिक बाजार में एक सोने चांदी के व्यापारी प्रदीप सोनी से लूटपाट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही थी और इसी क्रम में अभी तक हमने जो इस घटना से जुड़े जितने आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनसे अलग अलग उस पे सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो बरामद सामग्री में हमको 2 नग देसी कट्टा मिला हुआ है और 4 नग कारतूस मिले हुए हैं। इसके अलावा जो आभूषण हमने जब्त किए हैं उसमें 40 ग्राम सोना और चांदी लगभग 4.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हम लोग से रिकवर कर पाए।
0: बालोद जिले की डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 72 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 26 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने भेड़ी तिराहा पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इसी दौरान 4 अलग अलग मोटरसाइकिल के जरिए ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने साल्हे ऊना धान खरीदी केंद्र में 99 लाख रुपए से अधिक के घोटाले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने वर्ष 2025-26 में 3,140 क्विंटल से अधिक धान खरीदी की फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखाकर यह घोटाला किया। वहीं बारदाने में भी हेराफेरी की। पुलिस इस मामले में पहले ही समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिनों में छत्तीस

0: छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और वर्षा का मुख्य क्षेत्र जो है वो बस्तर संभाग होने की चांसेस है और दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिन में होने की चांसेस है और ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी जारी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में 2 दिन तक कोई विशेष परिवर्तन होने की तो चांस नहीं है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से सहकारिता और रजिस्ट्रार तथा सहकारी समितियों का आयुक्त नियुक्त किया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने रिसाली नगर निगम की पार्षद पार्वती महानंद को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में नोटिस जारी कर 25 जून तक जवाब मांगा है। जांजगीर चांपा जिले के पुटपुरा गांव में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सक्ती जिले के सेंदूरस गांव में बीते 2 और 3 जून की दरमियानी रात हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में मालखरौदा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के बाद लूट का माल खरीदने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम जिले में साइबर सेल और पुलिस की टीम ने आईपीएल क्रिकेट के मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टे का संचालन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में आज एक पटाखा गोदाम में आग लग गई, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से।

अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे ड्रोन तकनीक से आधुनिक खेती, नमो ड्रोन दीदी योजना और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइस इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे रात्रि 8:00। 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात्रि 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभाव।

भवन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको अवगत करा दें हमारे कल के कार्यक्रमों से।

कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम विचार बिंदु का प्रसारण होगा प्रातः 6:30 पर। रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे प्रातः 6:35 पर। गायन स्वर होंगे अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगावंकर के। संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण होगा प्रातः 6:45 पर। कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुनेंगे कल प्रातः 7:00। सुगम संगीत कार्यक्रम लेकर हम आएंगे प्रातः 7:15 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे साहित्य पत्रिका और 9:00 हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुंजन।

सुबह के 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा दोपहर के ठीक 12:00। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन हम आपके लिए प्रसारित करेंगे दिन के 1:10 पर और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन के 1:40 पर। कार्यक्रम दीदी के गोट इस प्रायोजित कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे दोपहर के 2:00।

श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

कार्यक्रम रजनीगंधा में अब पेश है दीपक पंडित की लिखी ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनवाइया जम किसान भैया बहनी मिला तीजई कर जय जोहार राम राम और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। भैया बहनी हो आज है बुध कर दिन और आज कर दिन हमन अपन महिला कृषक बहनी मन ला समर्पित करती। देखिए हमार बहनी मन खेती किसानी में इतना बगरा काम करते हैं और इतना उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं आगे बढ़ाते हैं और लगातार सरकार जो है कुन्हो ना कुन्हो तरह से मने कि जेकस बहनी मन कर आओ हाथ मजबूत होए बहनी मन कर आओ आत्मविश्वास बढ़े और खेती किसानी कर साथ साथ बहनी मन आर्थिक रूप से भी घर परिवार से स्वयं कर आत्मविश्वास कर साथ एकदम मजबूती से आगे बढ़े। वही चरण में गो

योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। किसान बहनियों, देखिए नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार का एक बेहद महत्वाकांक्षी और सराहनीय पहल है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बहनी मनला, विशेषकर महिला स्व सहायता समूह जो जरूरत है, उमला सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से उमला जोड़ना है। देखिए किसान भैया बहनी हो, अभी का जो समय चलाता है एकदम आधुनिक खेती का समय चलाता है। रवरे जाना था कि खेती किसानी में भी चाहे हमन ड्रिप पद्धति ले ले, चाहे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और केकस खेती में आधुनिकरण आता है, मशीन में मशीन भी तरह तरह का आता है खेती किसानी करे वाला। तो जो नमो ड्रोन दीदी योजना है एक ऐसा महत्वाकांक्षी योजना है जिनमें बहनी मतलब सशक्त बनाए बर योजना ला शुरू करल गई है। ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य है महिला मल्ला सशक्त बनाना, जैसे ग्रामीण महिला मल्ला ड्रोन उड़ाई कर डेटा विश्लेषण और ड्रोन का रख रखाव कर प्रशिक्षण देकर वो मल्ला आत्मनिर्भर बनाना है। अब ना सिर्फ देखिए खेत कर ऊपर ड्रोन उड़ा के देखना है कि भाई कितना चकबंद, कितना बड़ा खेत है, कहाँ कहाँ पर बीमारी लगी से, कहाँ का चीज़ कर कमी बेसी होता है। एकर अलावा ड्रोन कर रख रखाव भी, जैसे दो तरह का चीज़ हो जाते हैं कि देखिए एक तो ड्रोन उड़ाना और एक अलावा ड्रोन कर रख रखाव जो में तकनीकी गड़बड़ी आता है, चाहे कोई समस्या आता है ओला भी ठीक करेगा, और एकर भी डाटा विश्लेषण कर भी परीक्षण प्रशिक्षण इनमें देहल जाते हैं और बहनी मतलब आत्मनिर्भर बनाए भर ये शुरुआत करल गई से है। एक साथ साथ कृषि में आधुनिकरण भी होता है, जैसे खेत में पारंपरिक तरीका कर जगह ड्रोन तकनीक कर माध्यम से यूरिया, लिक्विड फर्टिलाइजर्स जैसे नैनो यूरिया और कीटनाशक बनकर छिड़कावला बढ़ावा भी देना है। अगर खेत हर चखर बड़ा है तो देखिए समय भी बगरा लगते, श्रम भी बगरा लगते और ड्रोन कर माध्यम से समय कर भी बचत होते और साथ ही साथ कम पारिश्रमिक भी लगते और कीमत भी कम लगते, तो आराम से लिक्विड फर्टिलाइजर्स मन के यूरिया मन कर छिड़काव आसानी से हो जाते, समय और लागत कर भी बचत होते। ड्रोन कर मदद से काम करे में कम पानी कम दवा कर उपयोग करके बड़े क्षेत्र में इला समान रूप से छिड़काव करल जा सकता है। अब देखिए ड्रोन में भारी सब्सिडी कर भी योजना है। एक ऐसे है कि सरकार जब महिला स्व सहायता समूह जो SHGS है इमल्ला ड्रोन खरीदे में 80% तक कर सब्सिडी अधिकतम 8 लाख रुपये तक देते, बाकी राशि खातिर किफ़ायती दर में लोन कर सुविधा भी उपलब्ध है। एकर अलावा जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है बहनी मल्ला वो मल्ला भी चयनित ड्रोन दीदी मल्ला 15 दिन का ट्रेनिंग दे जाते, इसमें 5 दिन का अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और 10 दिन में कृषि कार्य जैसे पोषण तत्व कीटनाशक का छिड़काव खातिर और अतिरिक्त प्रशिक्षण में शामिल है, जैसे ड्रोन ला भी रख रखाव ला भी ठीक करना वो सब। अब जो मानदेय है ये ला देखी योजना के तहत काम करे वाला बहनी मतलब मानसिक मानदेय भी दिहल जा रही, एकर उनमें नियमित आय सुनिश्चित हो। अब इनमें किसान और बहनी मतलब का लाभ हुई ये सोचे पर है कि अतिरिक्त आय कर साधन तो दिखत है। ड्रोन दीदी और अन्य किसान मनकर खेत में किराए में ड्रोन से छिड़काव कर सकता है, बढ़िया कमाई कर सकता है। एकर अलावा कीटनाशक कर सीधे संपर्क में आए ले कई तरह कर समस्या देखल जाते स्वास्थ्य संबंधी भी, तो एकर से जो ड्रोन से छिड़काव हो ही ओकर से ये समस्या से दो चार नहीं होना पड़ी। रोजगार के नए जो नया अवसर इनमें मिली ग्रामीण इलाके में ड्रोन पायलट, ड्रोन मैकेनिक और लॉजिस्टिक सेक्टर में युवा मन और महिला मन खातिर नया रोजगार पैदा हो रहे थे। योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे बर और पारंपरिक खेती ला स्मार्ट खेती में बदले कर दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और उचित कदम है। अब ये योजना कर तरह देखिए हमन देखब की पात्रता का है, तो नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से कोई एक महिला न भेटा ही और मने कि मने एक महिला नहीं मने पूरा समूह लाए में लाभ मिल सकता है। कैसे कि अगर परिवार कर कोई महिला योजना का लाभ उठाना चाहते तो कर पात्रता और संपर्क करे कर जो जैसे पात्रता का हुई योजना कर खातिर योजना का लाभ ले खातिर समूह और ड्रोन उड़ाए वाला महिला जैसे ड्रोन दीदी दोनों खातिर कुछ जैसे नियम है। कैसे नियम है कि NRLM में पंजीयन होना चाहिए, महिला स्व सहायता समूह में पंजीयन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और
कृषि से होकर जुड़ा होना चाहिए। सीधा सा बात है।

जो कृषि ले जुड़ल बहनी मन है, खेती किसानी करते, वही मन भावनात्मक रूप से जानी कि कैसे कैसे भाई हमार एक अलग जुड़ाव होते जो कृषि करते हैं महिला मनो मन जानते कि खेत और किसान कर कितना एक भावनात्मक लगाव संबंध होते, जैसे माता और पुत्र कर होते ना, वही कसन खेत और किसान कर भी संबंध होते। तो जो बहनी मन योजना से जुड़ना चाहते हैं उमन कृषि में भी हो और खेती किसानी से जुड़ा हो, कम से कम 70% सदस्य खेती किसानी और उकर से जुड़ल गतिविधि में जैसे पशुपालन बागवानी ये सब में सक्रिय होना चाहिए। कहाँ कहाँ कर, जैसे जो स्व सहायता समूह कर बहनी मन है उमन ला। अब जो समूह ऐसा क्षेत्र गांव कर समूह में काम करते जहां फसल कर कीटनाशक चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे नैनो यूरिया का छिड़काव कर अधिक मांग होते। ड्रोन पायलट दीदी पर जो पात्रता है वो चयन करे खातिर महिला सदस्य करूँ 18 से 50 वर्ष कर बीच होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता महिला ला कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और तकनीक की बात और नियम ला समझ सके। एक अलावा जो बहनी है कृषक बहनियाँ हैं वो ड्रोन दीदी पर पात्रता कर गोट करते हैं कि महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और 15 दिन का ट्रेनिंग खातिर बाहर जाने पर वो तैयार होना चाहिए। ड्रोन का रख रखाव और मदद खातिर ड्रोन दीदी कर परिवार कर कोई भी सदस्य जैसे पति बेटा बेटी चाहे ड्रोन असिस्टेंट के रूप में भी ओला ट्रेनिंग दिलाया जा सकता है। वो भी जो कर न्यूनतम जो पात्रता है वो 10वीं पास होना चाहिए। अब देखिए कितना बढ़िया योजना है कि अगर ड्रोन दीदी कोयला चाहता है कि मोर घर कर भी भाई कोई मोर बेटी चाहे मोर बेटा चाहे मोर पति ड्रोन असिस्टेंट कर काम कर सकते हैं। देखिए ड्रोन असिस्टेंट माने कई तरह कर होते, भाई ड्रोन ला उड़ाए कर बाद ओला मॉनिटरिंग करना है, ओला देखना है, तो भाई कहीं कुछ यदि समस्या होगी मान ला ड्रोन क्षतिग्रस्त होगी तो भाई ओला तुरंत ओला कलेक्ट करना है, तो ये सब चीज़ में ड्रोन असिस्टेंट कर भी में ट्रेनिंग दिलाया जा सकता है। आवेदन और संपर्क कहाँ कर सकते हैं, देखिए योजना ग्रामीण विकास और स्व सहायता समूह का नेटवर्क से जुड़ल है। एक प्रक्रिया स्थानीय स्तर में शुरू कर सकते हैं जैसे ग्राम संगठन है ना एक चाहे ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट ये सब में संपर्क कर सकते हैं। विकासखंड कर कार्यालय में जाकर ब्लॉक मिशन मैनेजर के अंतर और कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाके इनमें संपर्क कर सकते हैं। एक अलावा जो वेबसाइट है ये जो भारत सरकार कर उमें भी वो पोर्टल में भी जाके आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए जरूरी दस्तावेज अगर कहब तो आवेदन कर समय समूह का रजिस्ट्रेशन नंबर बैंक पासबुक सभी सदस्य का आधार कार्ड मोबाइल नंबर ड्रोन पायलट बनने वाला महिला कर 10वीं का सर्टिफिकेट भी तैयार होना चाहिए। अब ये जो खेती किसानी काम में एक्टिव है तो अपन ब्लॉक कार्यालय में विकास अधिकारी ले मिलकर अपन समूह में योजना में जुड़ के और नामला जुड़वा सकते हैं। तो भाई मोला लगता है कि लगभग जो ड्रोन दीदी योजना कर कैसे शामिल होना है कैसे लाभ लेना है ये बात ला मैं अपन तरफ ले बताए दिया हूँ। अब देखिए क्या है कि भाई जो बहनी मन रुचि रखते हैं तो भाई जहाँ चाह वहाँ रह कथे ना, तो ज़रूर से ज़रूर ये योजना कर जानकारी पूरा ले लही और जो अधीनस्थ अधिकारी मन है उमन जग जाए के और ये योजना से जुड़ी कर कामला शुरू करते हैं। अब किसान भैया बहनी देखिए एक और योजना है जो प्रधानमंत्री कर 15 सूत्री कार्यक्रम कर अंतर्गत आते इलाकथी उस्ताद योजना। ये अल्पसंख्यक समुदाय कर जो बहुत पुराना परंपरा चला आता है हस्तकला हुनर जो हो रहे ओला लुप्त हो से बचाए बर इला शुरू करल गई। अब इला देखे अब तो विरासत कर संरक्षण जैसे जो जो भी पुश्तैनी और पारंपरिक कला है वो मतलब बचाए बर इला सुरक्षित और संरक्षित करना है ये उस्ताद योजना कर अंतर्गत है। पुराना पीढ़ी कर मास्टर कारीगर कर माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय कर युवा मतलब प्रशिक्षित करना ताकि कला और अगला पीढ़ी कला ला भी दूसरा पीढ़ी में ट्रांसफर कर सके। पारंपरिक कला ला आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़ना और कारीगर मनला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीधा पहुँच दिलाना। अब योजना कर जो मुख्य विशेषता है मास्टर कारीगर और युवा मनकर मेल योजना कर तहत अनुभवी उस्ताद मने मास्टर शिल्पकार मल्ला जो पहचान के और युवा प्रशिक्षु मल्ला ट्रेनिंग देहल जाते। ट्रेनिंग कर दौरान युवा मल्ला उमे चटिक राशि भी प्रदान करल जाते। प्रतिष्ठित संस्थान जो रहते उमन का सहयोग भी रहते। कलाकार गुणवत्ता डिजाइन और आधुनिक बनाए में सरकार जो है पूरा इमें बड़ा बड़ा जो
फैशन टेक्नोलॉजी है, चाहे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है,

उमन कर भी मदद लेता है, और इमें संस्था बनकर जो नॉलेज है उर्मला भी इमें जुड़ल जाता है। योजना का सबसे लोकप्रिय हिस्सा हुनर हाट का प्रदर्शनी है। एक जरिए देश भर में अल्पसंख्यक कारीगर और शिल्पकार मल्ला अपन उत्पाद ला सीधे ग्राहक ला बेचे खातिर एक बड़ा मंच मिलते, जिमें वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया ला बढ़ावा मिलते। ये योजना के तहत सीट में एक बड़ा हिस्सा लगभग 33% महिला कारीगर मनबर भी आरक्षित रखल गई है, जिमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र कर महिला मन भी आत्मनिर्भर बने में मल्ला मदद मिल सकता है। तो भैया बहनी हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे जितना भैया बहनी मन है उस्ताद योजना कर भी लाभ लेके और पारंपरिक हुनर ला और मांझना है और पॉलिश करना है और चमकदार बनाना है। देखिए संदेश मल्ला है चटी के मल्ला सुनते ही फिर आगो कोट करें।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
7: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो संदेश मल्ला सुनिए आप। देखिए किसान मित्र हो एक ठी हमन छत्तीसगढ़ी लोगी सुनब। स्वर है बासंती देवारू संग तकर गाय तो लेगी एला सुने फिर आगू गोट करब।

गीतला सुनेन बासंती देव और संगताकर गाल। किसान भैया बहनी हो, देखिए मानसून आधारित धान कर खेती में जल प्रबंधन कर का भूमिका हो सकत है, हिला चटी खमला समझना चाहिए। ये बार कहते हैं कि भाई अलैनों कर प्रभाव में मानसून चटी कम रही, लेकिन देखिए हमन जो सीमांत किसान हन, छोटा किसान हन, एमन हमेशा अपेक्षा और आशा रखते हैं कि मानसून बहुत अच्छा हुई, और यही अभी भी आशा हमन रखती, आशा करने अनुरूप और या विश्वास भी है कि बढ़िया मानसून हुई। कहे कि देखिए बच्छर भर जो जल कर आवश्यकता कर पूर्ति होते यही मानसून करा से ही होते, और लगभग लगभग अब हमन देखा था ही कि विकास कर जो इतना हर जगह हमन देखा था कंक्रीट कर जंगल भी छत जाता है, जेकर से धरती कर जो जल स्तर है वो एकदम तेजी से कम होते। अब जल स्तर तो कम होते लेकिन अगर जो बरिखा कर पानी है वो हर धरती में प्रवेश करी तो कोई ना कोई तरह से जल स्तर तो बाढ़ ही, लेकिन जब ये तरह कर कंक्रीट बिछत जाता है तो अब पानी ला पैसे पर जगह भी नहीं होता है। एकर से जो तरह तरह का जो हम देखते हैं कि वायुमंडलीय बदलाव भी आता है, पर्यावरणीय बदलाव भी आता है। तो मानसून आधारित धान कर खेती में जो उचित जल प्रबंधन कर भूमिका है वो हर फसल कर उत्पादकता बढ़ाए बर, पानी कर बर्बादी रोके बर और माटी कर स्वास्थ्य बनाए रखे बर सबले महत्वपूर्ण है। धान कर खेती धान कर फसल जिमें जीवन चक्र जो धान कर जीवन चक्र है और भारी मात्रा में पानी कर आवश्यकता होते, लेकिन जैसे मानसून कर अनिश्चितता कम चाहे अधिक बारिश एकर कारण कुशल जल प्रबंधन कर प्रबंधन से ही बढ़िया पैदावार हमन ले सकते हैं। धान कर खेती में जल प्रबंधन कर विशेष जो बात है वो देखिए कि विकास कर विभिन्न चरण में पानी कर आवश्यकता होते। कैसे कि धान कर जो पौधा है वाला हर समय एक समान पानी नहीं चाहिए, अलग अलग चरण में अलग अलग तरह का पानी देना पड़ते। रोपाई कर समय जैसे पौधा जमे कर समय में खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। एकर अलावा जब कल्ला निकले कर अवस्था थे उस समय पानी कर आवश्यकता नहीं होते ज़्यादा, खेत में केवल नमी चाहे बहुत हल्का पानी जैसे 1-2 सेंटीमीटर पानी कर भी आवश्यकता होते तो वो भी कल्ला कर विकास और बढ़िया हो सकत है। बाली बनत समय में सबले संवेदनशील समय है, वो ये समय में कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर पानी लगातार खेत में रहना चाहिए, और इकर से पैदावार में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होते तो पैदावार में भी कमी दिखल जाते। दाना पकत समय जैसे बाली में दाना भर जाए के बाद कटाई लगभग 15 दिन पहले खेत से पानी पूरा खाली होना चाहिए, निकाल देना चाहिए और ताकि फसल एक समान रूप से पक सके। अब देखिए वैकल्पिक गीला और सूखा

0: एकर जो तकनीक है लगातार खेत में पानी भर के रखे के बजाय ये तकनीक ला अपनाना चाहिए। जैसे खेत में पानी लगाए कर बाद तब तक उला सूखे दे जब तक कि माटी कर ऊपरी सतह में हल्का दरार न दिखे, फिर दोबारा में पानी भर देना चाहिए। एकर से लाभ का होते कि लगभग 25% तक पानी कर बचत हो जाते और धान कर जड़ला ऑक्सीजन भी पूरा मिल जाते जेकर से वह बढ़िया मजबूत होए। मानसून का जो अनिश्चितता है ओकर से कैसे बचाव करना है, जैसे मानसून कभी जल्दी आते कभी देर से आते और कभी कभी बीच में लंबा सूखा पड़ जाते। अब कभी कभी देखी एकर से कैसे है कि वर्षा कर पानी ला संचित करे खातिर खेत कर चारों तरफ मजबूत और ऊंचा मेड़ बनाना चाहिए ताकि बारिश कर पानी से पानी बाहर ना बहे और जल भराव से निपटे खातिर भारी वर्षा का समय खेत में अतिरिक्त पानी जमा हो ले रोके खातिर जल निकासी कर उचित व्यवस्था होना चाहिए। काहे कि जल भराव से जो पौधा है वह सड़ भी सकता है। खरपतवार और रोग नियंत्रण ला भी पूरा ध्यान देना है। रोपाई कर शुरुआती दौर में 2 से 3 सप्ताह तक खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखे ले खरपतवार में कर जो बीजा है और अंकुरित नहीं हो पाते और लगातार पानी भरे रहे से खेत में फंगस और हानिकारक कीट का जो प्रकोप भी है वो भी बढ़ते। अब बीच बीच में पानी सूखे ले ये रोग कर जो संभावना है वह कम हो जाते और लगातार जल भराव वाला खेत में भारी मात्रा में मीथेन माने ग्रीन हाउस गैस निकलते जल जेकर से कुशल जल प्रबंधन और मीथेन उत्सर्जन ला भी कम करल जा सकता है। अत्यधिक पानी कर बहे से माटी कर जरूरी पोषण तत्व भी बह जाते तो सीमित और नियंत्रित सिंचाई ले एला हमन रोक सकते हैं। और जैसे मानसून आधारित जो धान कर खेती सही समय और सही मात्रा में जल प्रबंधन करे ले फसल कर पैदावार 15 से 20% तक वृद्धि होते और सीमित जल संसाधन में भी एक सर्वोत्तम उपयोग कर सकता हन। अब भैया बहनियों आज हमन प्राकृतिक खेती कर जो हमर किसान गोइट करीन है ओला सुना वीरेंद्र कुमार है खेती प्राकृतिक खेती कर कैसे कैसे लाभ ला बताते हैं कैसे उकर करते हैं तो एला अग्नु भैया जब गोइट करीन है तो एला चटी सुनल जाए।
1: देखा किसान भाई हो आज हम आए ही अंबिकापुर कर जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पदस्थ हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री वीरेंद्र कुमार जी और बढ़िया जानकार भी हैं युवा भी हैं और किसान भाई मतलब बढ़िया खेती पाती करे कर सीख भी देते हैं। तो आज हमन इनकर से गोट बात करब और इनकर से पूछब कि भाई प्राकृतिक खेती कर जो मूल सिद्धांत है वकर का लाभ है।
2: जी हाँ सभी किसान भाई मतलब अमन नमस्कार। प्राकृतिक खेती आज क्या आवश्यकता है सबसे पहले मैं अपन ला प्राकृतिक खेती के बारे में बताना चाहूँ। लगातार जो है निरंतर कई दशक से हमन रासायनिक जो है उर्वरक और रासायनिक दवा के प्रयोग हमन खेती में कराता आथन तेकर वजह से क्या है हमन के जो पर्यावरण की स्थिति है हमन के जैव विविधता है वह प्रभावित हो गई है। साथ में खेती की जो जमीन है ओकर संरचना हा ओकर प्रकृति हा खराब हो गई है बदल गई है तेकर वजह से हमन ला उसकी पहले से ही गुणवत्ता युक्त जो है उपज हमन ला प्राप्त नहीं हो पाते। साथ में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवा के प्रयोग से हमन के खेती के लागत हा घलो बढ़ गए है और ओकर से जो उपज हमन ला प्राप्त होते ते उसकी पौष्टिक नहीं हो और जेकर सेवन से जो है मानव समाज में कई प्रकार के कीट बीमारी के घलो संचार होते। तो जैसे कि मैं बतावत हूँ प्राकृतिक खेती आज क्या आवश्यकता है आज हमारे लिए नहीं अपनाबो तो कल हमन के वंशज मनबा कछुला बचा के नहीं रख सकन ना खेती योग्य जमीन रह जाही और ना ही ओमन वही पर्यावरण है सुरक्षित रहे।
1: हम देखते कि भाई हम प्राकृतिक खेती के गोट करती बाकी किसान भाई मन कैसे इला शुरू करें। एक समय रहीस कि हम जग ज़्यादा पशुधन रहीस हमर जग गोबर ज़्यादा होत रहीस हमन कर जो पेड़ पौधा मन रहीन उमन ज़्यादा रहीन तो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधा मन जब पतझड़ होए तो झरें फिर बरसात भी बहुत मूसलाधार होए 4 महीना होए तो पूरा बही के खेत में आ जाए तो हर अपने आप खाद बन जात रहीस ओकर से जो उत्पादन होए और बड़ा गुणवत्ता युक्त रहीस गोबर पर्याप्त रहीस ओहर देखा जितना हमन कर लगातार जो दोहन होइस पेड़ पौधा मन कर तो हरियाली हर भी नष्ट होइस। अब पतई मन उतना पानी में भी नहीं बरखा भी ज़्यादा नहीं होए ना तो जो पान पतई हमारे खेत में बह के आए गोबर भी कम होगी, इस काहे की पशुधन कम होगी। तो ऐसा

0: स्थिति में दोबारा अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाई तो क्या कुछ करना पड़े किसान भाई मलारा, क्या सलाह देना चाहब?
1: देखा प्राकृतिक खेती के जैसे कि हमन सिद्धांत के बात करबो तो सिद्धांत में मुख्य रूप से जैसे अभी आप मन सवाल जो सामने से आप मन के तेमा सिद्धांत ला कवर करना बहुत आवश्यक है। सिद्धांत में जैसे कि हमन अच्छादन के बात करथन और वापसा के बात करथन यह का चीज़ है तेला हमन समझबो। अच्छादन में जैसे कि जमीन में नमी की मात्रा कम हो जाते खरपतवार नियंत्रण बा हमन मल्चिंग यानी कि अच्छादन के प्रयोग करथन। दूसरा ये भी करथन कि जैसे वापसा वापसा में क्या है जमीन में जो सूक्ष्म जीव मजबूत मौजूद रहते वो सूक्ष्म जीव जैसे दलहन फसल में राइजोबियम जीवाणु रहते धान्य फसल में एजेटोबैक्टर रहते ज्वार फसल में जो स्पिरम रहते ऐसे नाना प्रकार के जो सूक्ष्म जीव जे हमन के मुख्य फसल के जड़ के वृद्धि और विकास बस सहायक होते ये मन का है अभी नष्ट हो गए है तो एक अच्छादन और जो है वापसा बहुत आवश्यक हो जाते। साथ में जो जमीन में खाद और उर्वरक पोषक तत्व के जो पूर्ति रहते तेला पूर्ति करे वह हम जीवामृत के प्रयोग करथन और जीवाणु बीज जनित और रोग जनित जो मृदा जनित जो बीमारी फैलते तेकर प्रकोप ल कम करे वह हमन बीजामृत बनाथन। तो ये चार चीज़ है मुख्य रूप से बीजामृत जीवामृत वापसा और अच्छादन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आते तेला हमन ला करे के आवश्यक रहते यही एक मूल सिद्धांत है। और जैसे सवाल उठा थे कि अभी की स्थिति में हमन कैसे रासायनिक खेती ला त्याग करके प्राकृतिक खेती अपना सकत हन तो देखा एक किसान भाई का ना अगर गाय नहीं रही पशुधन नहीं रही तो वह खेती ला सही तरीके से नहीं कर सके। क्या बाकी हमन के समाज में ऐसे भी किसान हैं जेमन सीमांत कृषक के जो है वर्ग में आते हैं लघु कृषक के वर्ग में आते हैं जेमन का ना ट्रैक्टर नहीं रहे तो हमला तो जुताई बा काकरो आने के ट्रैक्टर ला मांगे लागी है ना तो वहाँ का है खेती की लागत हम बढ़ते ऐसे में वाला पशुधन रखना आवश्यक हो जाते। अब पशुधन रखी तो वाला फायदा हुई वाला गाय बछड़ा और बछिया तो मिलबेज कर ही दूध तो मिलबेज कर ही लेकिन साथ साथ वाला गोबर और गौमूत्र मिली और वही गोबर और गौमूत्र से अब फसल जो उगाथन जेकर अवशेष से हमन ला एक तो खाद की प्राप्ति होते जेला हमन अगर खेत में डालबो तो हमन ला किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डाले की आवश्यकता नहीं है। और जो प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है जैसे कड़वा कड़वा पेड़ पौधा के पत्तियां हैं तीखा पत्तियां हैं और जो थोड़ा सा फफूंद नाशक और जीवाणु नाशक जो प्रकृति ले हुए जो पेड़ पौधा हमन के आसपास उपलब्ध है ते मन ला हमन इकट्ठा करके दवाई बना सकते हैं। जैसे कि आप मन ला जानकारी हो ही नीम के पत्ता कड़वा रहते करंजा कड़वा रहते आँख मदार जला इति मदार कथा आप मन है ना तो और ओकर अलावा निर्गुंडी होगीस अरंडी के पौधा होगीस है ना सीधा फल के पौधा होगीस ऐसे जो पौधा है तिमन है जो कड़वापन लिए रहते मीठा नीम के पत्ता जो है ये सब चीज़ ला हमन जो है छोटे छोटे भाग में कूट करके और गौमूत्र के साथ में ये ला थोड़ा उबाल करके जो रस मिलते ते रस ला हमन इकट्ठा करके अगर हमन अपन के पौधा मन में डालबो तो वो जो है इल्ली वर्गीय जो कीट रहते ते सब वो चीज़ खत्म हो जाते। और वहीं जो चूसा कीट लगते तेकर प्रकोप बा प्रकोप लकम करे बा हमन नीम के पत्ती करंज के पत्ती और नीम के बीज जाते जल निम्बोली कथन तेला गोबर और गौमूत्र के साथ में पेस्ट बना करके हमन जो है कीट व्याधि के प्रकोप ला कम कर सकते।
0: हम देखिए कि जब भी किसान भाई मन अगर ज़्यादा गोबर खाद भी डालत हैं, चाहे कंपोस्ट खाद डालत हैं, चाहे वो मन का खेत में बढ़िया पर्याप्त खाद है और पौधा मन हरिया रहते हैं, ओकर बाद भी मन में लगे कि कम से कम यूरिया का प्रयोग कर दो, तो अगर टॉप ड्रेसिंग में कोई खेती करी ना है तो उनकर मन लागत है कि तनी मनी यूरिया डाल सकत है, तो वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए राहुल के हिसाब से?
1: देखा यूरिया बढ़िया सवाल है रे। यूरिया जो उर्वरक है वह नत्रजन जो पोषक तत्व तो होते तेकर माध्यम होते ओकर माध्यम से हमन के फसल ला जो है नत्रजन मिलते लेकिन हमन ये नत्रजन फास्फोरस और जो पोटास के बात करथन इला हमन दूसरा माध्यम से भी दे सकथन क्योंकि हमन अभी देखथन कि यूरिया के जो बोरी है 400-500 रुपया अभी बाजार में मिलते DAP की बोरी है 1400-1500 रुपया मिलते तो खेती की लागत बढ़ जाती तो एकर विकल्प के रूप में हमन जीवामृत घन जीवामृत और मटका खाद हंडी खाद के माध्यम से एकर पूर्ति ला कर सकत हन।

0: जो जीवामृत अर्थ है यह बहुत ही विधि है, बहुत ही सरल है, बनाए के तरीका बहुत आसान है। पशुधन के जैसे बात कर रहे हैं, नौकर से मिलने वाला जो गौमूत्र है, गोबर है, तेला गुड़ और बेसन के साथ में मिला करके एक ठी मिक्सचर बनाथन, और ओमा सूक्ष्म जीव के मात्रा ला बढ़ाए बर हमन थोड़ा सा बरगद या पीपल पेड़ के मिट्टी ला ले लेथन ओकर नीचे के ला का, बाकी वो जगह में पौधा जो है अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन जो है वह रिलीज करते छोड़ते, तो वहाँ सूक्ष्म जीव के मात्रा अधिक रहते। तो ऐसे मिट्टी ले लेथन तो हमन के जो मिश्रण तैयार करथन गोबर गुड़ बेसन और गौमूत्र के, तो जो है सूक्ष्म जीव की मात्रा है एकदम बहुत अधिक मात्रा से तेज गति से बढ़े के चालू हो जाते। अब एला जब हम यूरिया और डीएपी डाले के जो समय होते, जैसे धान बोए के 20 से 25 दिन बाद में हमन यूरिया डाल देथन, यही समय में ये जो है जीवामृत ला हमन डालबो तो वह जो है यूरिया डीएपी के काम करही, और साथ में जो पौधों के बढ़वार बा सूक्ष्म जीव जो मृदा में उपस्थित रहते तेकर क्रियाशीलता लगलो बढ़ाही और संख्या लगलो यह बढ़ाते।
1: श्री वीरेंद्र कुमार जी राउत से बड़ा अच्छा गुड बात होते। आखिरी में एगो सवाल करना चाहूँगा।

0: जैसे धान बोए के 20 से 25 दिन बाद में हमन यूरिया डाल देथन, यही समय में ये जो है जीवामृत ल हमन डालबो तो वह जो है यूरिया डीएपी के काम करही। और साथ में जो पौधों के बढ़वार बा सूक्ष्म जीव जो मृदा में उपस्थित रहते तेकर क्रियाशीलता लगलो बढ़ाही और संख्या लगलो यह बढ़ाते।
1: हाँ श्री वीरेंद्र कुमार जी राउत से बड़ा अच्छा गुड बात होते। आखिरी में एगो सवाल करना चाहूँ मैं कि राउरकर जो कृषि विज्ञान केंद्र है, एकर माध्यम से भी किसान मन तक प्राकृतिक खेती करे बर कोई प्रयास राउर मन के तरफ से चलत है, कृषि विज्ञानी मन के तरफ से?
0: जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। देखा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है वह मुख्य रूप से चार प्रकार के जो है मुख्य सिद्धांत ल फॉलो करते, जो है साल भर जो है हमन जो है किसान मन ला प्रशिक्षण लेथन। तो प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुसंधान, ये सब माध्यम से हम किसान तक तकनीकी जानकारी ल पहुँचाथन। तो हमार प्राकृतिक खेती के जो प्रशिक्षण है वह कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, और वैज्ञानिक मन जो है 24 घंटा और 7ों दिन जो है आप मन के सेवा में उपलब्ध हैं। तो आप मन यदि इच्छुक हा तो समूह में आकर के प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण आप मन प्राप्त कर सकते।
1: देखा बड़ा बढ़िया है, राउत से गोड बात हुई और बढ़िया किसान भाई मल्ला राउर प्राकृतिक खेती कर जो मूल सिद्धांत है और ओकर से होए वाला लाभ है ओकर बारे में बताए राउत कर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये रहिन श्री वीरेन्द्र कुमार जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, और बहुत बढ़िया प्राकृतिक खेती कर जानकारी दिन कि केकस मृदा एकर से सुरक्षित स्वस्थ संरक्षित रह सकता है और लाभ किसान ला कितना भेटा सकता है। अब देखिए आजकल जो मंडी भाव है इला ले लेता हूँ। मंडी में आज को देख, अब तो मक्का है 2400 रुपया प्रति क्विंटल, बाजरा है 2600 रुपया प्रति क्विंटल, वही कसन सरसों है 6000 रुपया प्रति क्विंटल, और अगर हमन धान कर बात करें तो 2370 रुपया प्रति क्विंटल। अच्छा देखिए, जो हमारे किसान भैया बहनी मन है एमन विशेष जो सामान्य सलाह दिया जाते कि किसान मन ला प्रतिदिन मौसम संबंधी अपडेट ला में निगरानी जरूर रखना चाहिए। जैसे अपन और एकर अलावा जो पशुपालक मन है उमन पशु मन मन पर पिए कर पानी पर्याप्त रखना चाहिए, और सिंचाई का कार्य सुबह और शाम कर समय करना चाहिए ताकि वाष्पीकरण से बचाव हो सके। जो किसान भैया बहनी मन है खेती किसानी कर शुरुआत करते हैं उमन अपन नज़दीकी सहकारी कृषक सेवा समिति ले खाद उर्वरक और बीज आदि कर उठाव जरूर कर लें। एकर अलावा जिसे देखिए अभी कृषि मौसम संबंधी जो चेतावनी चाहे संबंधित प्रभाव है, अधिक तापमान कर कारण फसल में पानी कर आवश्यकता और नमी कर तनाव बढ़ सकता है। एकर अलावा सब्जी और बागवानी फसल में फूल झड़ना, मुरझाना और गर्मी से नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ गरज चमक और बिजली से नर्सरी और कोमल पौधला नुकसान हो सकता है। गरज चमक कर दौरान सभी कृषि संबंधी कार्य रोक देना चाहिए। एकर अलावा बिजली से बचाव कर उपाय भी अपनाना चाहिए। पशु मल्ला जो है छाया और पानी उपलब्ध कराना चाहिए। खेत में जल निकासी कर व्यवस्था और उर्वरक एवं कीटनाशक का छिड़काव भी इस समय में स्थगित करना चाहिए। अब देखिए आज का अधिकतम तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, और कालीकर जो अनुमानित तापमान है अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। आज का सवाल करके दी अगर हमन बढ़ब तो आज का सवाल जो हमारा है कि हमन आज का सवाल से पाछू पिछले बुध कर जो हमारे सवाल पूछे गए रही ओला में ले आता हूँ कि धान कर थरा बुआई करे कर उचित समय का है, तो एक जवाब है कि मानसून आगमन से 20 से 25 दिन पहले माने 25 मई से 15 जून कर बीज दो थरहा डाल देना चाहिए। अब जो हमारे किसान भैया बहनी मन है हमारे कार्यक्रम सुनते हैं तो चटिक बेरा बची से तो जाती जवाती हमन एक ठी लोकगीत सुनम गुरु सिंह पैकरा और संगता कर गाल तो ले गीला सुनल जाए।

माता कहे तो पुत्र है मेरा, भाई कहे भुजा हमारी। माता कहे तो पुत्र है मेरा, भाई कहे भुजा हमारी।

0: essa
1: देखिए देखिए आज का सवाल में जो हम सवाल ले रहे थे कि मानसून पौध कर में जमे कर समय खेत में कितना पानी कर भरा होना चाहिए, रोपाई कर समय खेत में कितना पानी कर भरा होना चाहिए, जवाब मेल कर द्वारा चाहे चिट्ठी पत्री कर द्वारा दे सका था। तो आज कर चौपाल में अत्रे तीजई लाभ इधर दई, स्वच्छ रहा स्वस्थ रहा, फिर बेटा राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो हमसफर जयमाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी श्रोताओं के फरमाइश से। पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुंग, अश्वनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविका ढींगरा के। पोस्ट केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम, टेकराम सिंधराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह टेकाम, अरविंद सिंह टेकाम ने। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका। पूना वाले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने ने। धनोरा विटाली तहसील नांदूरा जिला बुलढाड़ा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। जलगांव जामोद महाराष्ट्र से संतोष काटे और उषा काटे ने। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभय सिलोड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के ने। अंदार नाटघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। अमगासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओमकार सुरलकर ने। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम, श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर

पर आइए सुनते हैं फिल्म मोहब्बती का ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता, धिया, काव्या और मंजू राजवाड़े ने। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम ने। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरानी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। ग्राम सिंधमा बाजारपारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से दिनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह ने। रायगढ़ से रोहित और जयलक्ष्मी ने। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगरांडे, वनीता गंगरांडे और मोहम्मद हसनैन पवार ने। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वंदे मिड्ढा, वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा ने। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नूखेलाल वर्मा ने। नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और सचिन शर्मा ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में पेश है अगला नगमा, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सनम बेवफा से। गीतकार हैं सावन कुमार और संगीतकार हैं किशोर शर्मा और महेश शर्मा ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार नामदेव द्रौपदी देवी राम देवी नामदेव ब्रजेश कुमारी नामदेव अखिलेश कुमारी नामदेव लखनलाल नामदेव चाहना नामदेव आकाश नामदेव रानी परीराम नामदेव सुरभि नामदेव और पायल नामदेव ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दतरंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा ने। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नाज और बेबी चाहत ने। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू ने। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु ने। लेश्वरनगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर निर्मला विशाल नहावकर मलकापुर से नारायण इंगले सोपान तांडे और आशीष मोहरेकर ने। वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन जीवमय जैन और सरथना मेरठ से आदि जैन अंश जैन और भव्य जैन ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा ने। विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा महेश कुमार कुकरेजा संध्या माही पूजा छुटकी शरद कुमार डोडवानी ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और आपके साथ हूं मैं आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप ने। स्वरूप आनंद सरजाल जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से, अहमद गढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जासमीन, सकीला, शना, समा, हीना,

रजिया सुल्ताना अंसारी ने, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम, आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुट्टी भगत ने, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा, अभिषेक और हर्षित शर्मा ने, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी ने, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी ने, रायपुर से विनोद वडलकर, वीणा और विविधा ने, छत्तीसगढ़ चूड़ीलैंड मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने, गणिया मौजे उस्तू भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप तो ऐसे ना थे फिल्म से। गीतकार हैं निदा फासली और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में लीजिए अब सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत। गीतकार हैं मजरू और संगीतकार हैं जतिन ललित। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है। बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और अंजलि रोशनी सारवा ने। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, साहिन सुल्ताना, शोनू तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक ने। जय जिनेंद्र श्रोता संघ परमणी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई और प्रीतेश संगई ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू और शिखा सिफाली ने। राज कमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालान मराठावाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, सैयद नोयान धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते ने। मिट्टी मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वांधवानी और गेंदु भाई ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नाहकर, निर्मला, विशाल मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तांडे, आशीष मोरकर ने। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बुड़के, श्रीमती नंदा बुड़के, हनुमान बुड़के, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने। शादुलशहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि और अश्वनी

सा, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाहनी। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया, भोला वाक्तरिया, प्रवीण रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, मिथिलेश और मनोज यादव ने। टोरोवाला जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, वामिका वाणी थांदी ने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हमने सुनाया आपकी पसंदीदा गीत। श्रोताओं, इसी तरह अपनी पसंदीदा गीतों की फरमाइश हमें भेजते रहिए और हम आपको सुनवाएंगे आपकी ही फरमाइशों पर प्यारे प्यारे गीत। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे यानी आपकी रेडियो साथी जयमाला को कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश से। नमस्कार। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: ईमेल आईडी
0: करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक

0: और विशेषता है। हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
0: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका

0: विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों

0: नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का

0: अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या और इवनिंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है बॉर्डर। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774

0: 2300600 नंबर एक बार फिर 0777423060।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत कार्यक्रम में

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम लगे, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये

0: अरे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं, वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या आप जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए हैं, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बी फिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहाँ आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा, और निश्चित ही वो ऑल वेदर

0: टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक, इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
0: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी

0: छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है, और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें, इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर आप देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है, ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के, और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी हस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है, और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे, और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश, और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है। उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं। किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है। यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है, आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज
1: जी
0: जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में

0: अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है। और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है, उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले। और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है, वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में, उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखें यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे हैं। ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है। भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है, या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र

लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया, आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के

0: मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते

0: नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति, दक्ष, कुंती, मंगल, राम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति ने। सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निज़ामुद्दीन, आस्ती जिला जालाना मराठवाड़ा से। दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज ने। दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर, ग्राम खक्कल तहसील को जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। धाणी नांदूर महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे और संदीप बाठे ने। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने। बिहार भवन दिल्ली से याकूब आसमा फ़कीर, यूसुफ आसमा फ़कीर, सैयद आसमा फ़कीर, कलीम आसमा फ़कीर और सलीम आसमा फ़कीर ने। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल ने। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ने। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। ग्राम दवनसरा पोस्ट दवना जिला सूरजपुर से कपिल राज देवांगन, दखल कल्लू भाई झांगुरलाल, ब्रिजेन चक्रवर्ती, उद्देश्वर देवांगन और दिलभरन बिप्ता ने। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे, शाहजी नगर देंगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म दिल क्या कसूर का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है सहसपुर लोहारा दुनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुन्नीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन ने, बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा सबिस्ता, मोहम्मद नशीब पलक, लुबना और यश मंसूरी ने, मनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का फिर श्रीमती श्रविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी ने। अमरावती से सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना ताई गुंडा ने, हीरामणि शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने ने। अंडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और मंजू राजवाड़े ने। प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी ने। बुलढाड़ा वड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक ने। पीपल रोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ भाविस्टे, अनीता और राहुल ने। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और स्वीटी दीवान ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म तेजाब का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े ने। कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी लोरमी ग्राम चचेड़ी से। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे ने। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने और चनोरा जिला फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन, रंजीत कुशवाहा और रामानंद कुशवाहा ने। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति ने। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और पांडेराम राजवाड़े ने। स्वरूपानंद सरजाल जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। विनायक बिंडे, श्रीमती मंगला बिंडे, शुभम बिंडे अकोटा से। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर अपेक्षा, अमीन दीवान, आदेश कुमार काले ने। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने। देवरी भाटापारा से के आर शाहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री ने। दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल बलौदा छत्तीसगढ़ से। मंचला रेडियो लिस्नर क्लब अकोला से के शरद पाचपुर, श्रीमती शोभा पाचपुर, बीबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि अक्षय और अभिनव पाचपुर ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है?

जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा सुनिए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी ने कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलो से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर ने। रंजौरी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल ने। एटा से नबी हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, यसफ अब्बासी ने। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह ने। मिट्टू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई ने। बीड शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े और अदिति बंसोड़े ने। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा ने। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद और पोपोरानी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के इस गीत के साथ। गीतकार हैं हजरत जयपुरी और संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम और चांदनी नाज ने। सीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा ने। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आपका ये पसंदीदा गीत।

कार्यक्रम मन भावन में अब सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में फिल्म खिलाड़ी का ये गीत। गीतकार हैं अनवर सागर और संगीतकार हैं अनवर सागर। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावन मध्य प्रदेश से मोहम्मद शादिक, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर राही, श्रीमती सरिता गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश गम्हाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रणीता गम्हाड़कर, अर्जुन गम्हाड़कर, टुकटुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाड़कर, सुमित गम्हाड़कर, कुमारी ध्वनि गम्हाड़कर, परिनी। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में मिस्टर इंडिया फिल्म से। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने सुना मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम मनभावन में अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म अजनबी का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राहुल देव वर्मा। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर ने। भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। धरसीवा से छेंदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव ने। दुर्गापारा संतोषीनगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव ने। ग्राम पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछौर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछौर ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अजनबी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। इसी गीत के लिए फरमाइश की थी मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, तन्मय बेबी अनिष्का, राधिका गजबिये, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हमने सुनाया अभी आपको फिल्म अजनबी का ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम मनभावन आज यहीं तक। अपने पसंदीदा गीतों को सुनने के लिए हमें अपने पत्र भेजते रहिए और हम आपको सुनाते रहेंगे आपकी पसंदीदा गीत कार्यक्रम मनभावन में। तो कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो साथी जयमाला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की

0: 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarterfinal match will be played against compatriot and world number 39, Isharani Barua. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।